शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दिव्य दर्शन के इस बहुत ही प्यारे से पवित्र प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज हमारे साथ एक बहुत प्रबुद्ध मनुष्य इंसान व्यक्तित्व मौजूद हैं। ये हैं कर्नल वीडी सिंह साहब, जो भारतीय सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। 30 सालों तक इन्होंने भारतीय सेना में हमारे देश की सेवा की और सैन्यकाल के दौरान आखिरी 2 सालों में ये लद्दाख में रहे, जहां पर बौद्ध धर्म का प्रभाव इनके ऊपर बहुत गहरा हुआ। ये एक अनुभवी विमान चालक होने के साथ साथ एक गीतकार भी हैं। इन्होंने हमारे आज के कलाकार प्रोग्राम में भी शिरकत की और बहुत बहुत प्यार पाया। तो कर्नल वीडी सिंह साहब, आपका स्वागत करता हूं मैं। हमारे श्रोताओं को जो आज आपका आपके विचार सुनने वाले हैं आध्यात्म के बारे में, कुछ कहिए
1: जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका समीर, कि आपने एक ऐसे विषय के बारे में मुझे बात करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि हम सभी लोगों के जीवन के अंदर निहित है। और मेरे अगर मैं कहूं आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी, तो मतलब इसका मतलब जीवन के गहरे अर्थ और एक उद्देश्य की खोज करना है, जो कि किसी धर्म जाति से नहीं बंधा होता है। और इसमें शांति, करुणा, दूसरों के साथ जुड़ाव महसूस करना, जिसको हम बोलते हैं ना एम्पैथी, सिंपैथी, कंपैशन, और ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से इस चीज को प्राप्त किया जा सकता है।
0: ओके जी, दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स सो अमेजिंग। जाहिर सी बात है, इस प्रोग्राम में अभी दोस्तों हम लोग इसी तरह की कुछ बातें करने वाले हैं, जिसे हम अपने आप को पहचान पाएं। तो शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को, और वीडी सिंह साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके अनुसार, उनके हिसाब से, उनके परसेप्शन में आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी क्या चीज है? हाउ डू यू डिफाइन स्पिरिचुअलिटी सर?
1: जी, वैसे तो आध्यात्म के ऊपर लोग बाग अलग अलग तरीके से व्याख्यान देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आध्यात्म के कुछ एक पहलू होते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। उसमें सबसे पहले तो होता है आत्मज्ञान, अपनी वास्तविक प्रकृति जिसको हम आत्मा बोलते हैं, उसको समझना और जानना।

0: और ये भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है, मेरे ख्याल से अध्याय नंबर 2 में
1: जी।
0: आत्मा, आत्मा और परमात्मा का संबंध, ये भी एक बहुत खास पहलू है इसका। और ये समझना कि जो आत्मा जो है यानी व्यक्ति, वो ही परमात्मा का एक अंश है, और इनके बीच के संबंध को अनुभव करना और एक आंतरिक खोज करना, यानी बाहरी दुनिया से हटकर अपनी आंतरिक चेतना, कॉन्शियसनेस और एक्सपीरियंसेस पर ध्यान को केंद्रित करना। और मैं क्योंकि निचिरेन बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ हूं पिछले कुछ सालों से, तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति भी इसका एक बहुत खास पहलू है। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य उस चीज को प्राप्त करना है जिसे मृत्यु छीन नहीं सकती, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। हमारी सारी जिंदगी इसी डर में बीत जाती है कि हाय मैं मरूंगा, कब मरूंगा, मेरे मरने का क्या जरिया होगा
1: जी।
0: तो और साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें ध्यान, योग, मनन और ज्ञान के माध्यम से आत्मा को हम पोषित करते हैं, और इसलिए आत्मिक शांति और आनंद मिलता है।
1: ओके, ऑलराइट। सो दोस्तों, जितना सिंह साहब बता रहे हैं उसके हिसाब से जितना मुझे पकड़ में आया, जितना मुझे प्यारा लगा, अच्छा लगा, वो यही है कि हम आंतरिक खोज करते हैं, अपने आप को खोजते हैं, उसी को बस आध्यात्म कहते हैं, यानी कि आत्मा की खोज को आध्यात्म कहा जा सकता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही साहब आपने। जाहिर सी बात है, विचार करने की बात है। और देखिए दोस्तों, पर्पज, ये जो उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम का, वो यही है कि किस तरह से हम अपने आप को और बेहतर खोज पाए। आज सिंह साहब से हमारी बात हो रही है तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा और कुछ ना किसी रास्ते पर हम चल भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं प्रस्तुत करता हूं एक प्यारा सा भजन, पवित्र होकर फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो सिंह साहब, मुझे ये बताने की कृपा करें कि क्या धर्म और आध्यात्मिकता एक ही चीज है या इनमें कुछ अंतर है? मेरा मतलब, अगर हम सरल भाषा में बात करें तो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, क्या डिफरेंस है इसमें?
0: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये समीर। आध्यात्म का संबंध व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक सत्य से है
1: जी,
0: जबकि धर्म अक्सर संगठित अनुष्ठानों और बाहरी नियमों से जुड़ा होता है, लेकिन दोनों का लक्ष्य परम सत्य को पाना हो सकता है। आप देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति केवल अपने अंतर्ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहता है, बल्कि उसकी आस्था और विश्वास बाहरी कई नियम और कर्मकांडों से जुड़े होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रोटोकॉल्स। धार्मिक व्यक्ति केवल उसको फॉलो करना और भक्ति करना जानता है, लेकिन वो जिज्ञासु नहीं बन पाता। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो जिज्ञासु और जागरूक दोनों है, और अपना मार्गदर्शन अपनी जिज्ञासा के आधार पर करता है। एक धार्मिक व्यक्ति खुद से अधिक ईश्वर को मानता है और जानता है और ईश्वर की सेवा करना चाहता है
1: जी।
0: जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आत्मा को परमात्मा से बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वो ना तो किसी नियम में बंधा है, ना किसी आस्था में और ना ही किसी भक्ति में, वो केवल अपने स्व से बंधा है। स्व का मतलब स्वयं
1: जी, वन सेल्फ, अपने आप से।
0: जी जी,
1: बहुत खूब, बहुत खूब, इतने प्यारे ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है सिंह साहब ने। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इस पूरे प्रोग्राम को बहुत प्यार से ध्यान लगाकर सुने तो बहुत कुछ क्लियर हो पाएगा, हम कैसे जिंदगी को जी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए ये प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं, इसका आनंद ले।
2: हे प्रभु, हे मालिक, हम सब तेरी ही संतानें हैं, तू हमारा परम पिता परमेश्वर है, हम तेरी शरण में हैं प्रभु, हम तेरी अर्चना करते हैं, हमारी रक्षा करो।

0: सिंह साहब, क्या कभी कोई व्यक्ति बिना धर्म के आध्यात्मिक हो सकता है? मेरा मतलब इस क्वेश्चन को ठीक से समझना जरूरी है कि फर्ज कीजिए मैं किसी रिलीजन को ना अपनाऊं, फिर भी मैं स्पिरिचुअल हो जाऊं, इज दैट पॉसिबल?
1: ये भी बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा आपने
0: जी
1: समीर जी। यानी बिल्कुल एक बुकिश नॉलेज वाली बात है, किताबी तौर पर या सैद्धांतिक तौर पर
0: जी
1: नहीं है जरूरी।
0: ओके,
1: कोई जरूरत नहीं है किसी धर्म विशेष का पालन करने की, लेकिन अध्यात्म की जो भी किताबें हम पढ़ते हैं वो किसी न किसी धर्म से ही आती हैं, है कि नहीं?
0: जी जी जी जी।
1: मैं अगर बोल दूं कि नहीं, आपको किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक होने के लिए, तो फिर आप क्या करने वाले हो? आप बताओ, आध्यात्मिक अध्यात्म का अर्थ भी आपको कौन बताएगा? दुनिया में हजारों लोग धार्मिक हैं, उसमें से 99% मान ली आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ धार्मिक हैं
0: जी।
1: तो उनके लिए धर्म का मतलब क्या है? मान्यता है यानी बिलीव्स
0: जी,
1: और कुछ एक ऐसी बिलीव जो हजारों साल से चली आ रही है तो उसको मान लो, क्यों? क्योंकि वो चली आ रही है
0: जी जी।
1: फलाना फलाना फलाना फलाना पुरानी कहानी इससे संबंधित है, उसको मान लो, क्योंकि वास्तव में अध्यात्म का धर्म के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं। धर्म के केंद्र पर होता है अध्यात्म। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूं, धर्म के केंद्र पर होता है अध्यात्म। और ऐसे भी कह सकते हो कि धर्म में से कोई भी धर्म हो, उसमें से अगर बाकी सब चीजें हटा दो
0: जी,
1: जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बहुत आसान शब्दों में बोलते हैं कि यानी उसको अगर आप सफाई कर दो कचरे की तरह, कई एक चीजें होती हैं
0: जी जी,
1: तो उसमें जब जो सेंटर थीम जो उसकी बचेगी वही है अध्यात्म सेल्फ, यानी एक आप ह्यूमन रिवॉल्यूशन होता है वो
0: जी,
1: हर एक धर्म के अंदर एक सेंट्रल थीम होती है, वही चीज होती है अध्यात्म। और हमको अध्यात्म की जो ज्ञान मिलता है वो किसी ना किसी रिलीजियस बुक से मिलता है
0: जी जी जी। मैं समझ सकता हूँ सर, ये दरअसल छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया इस वजह से था कि कहीं पर मैं पढ़ रहा था तो वहीं से ये क्वेश्चन उठा। वैसे तो ये बहुत ज्यादा गूढ़ सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मेरे समझ में आया नहीं, लेकिन फिर भी कि कुछ महात्मा रहे, जैसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की बात करें हम, तो विवेकानंद मेरे जो पढ़ने में आया, और उसके बाद एक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो चीज भी मैंने देखी, तो उन लोगों का संबंध बहुत ज्यादा रिलीजन के साथ दिखलाई नहीं दिया, लेकिन वो बहुत जबरदस्त आध्यात्मिक थे। उन्होंने बहुत कुछ बताया जीने के तरीकों को और समझ अपने आप को समझने के तरीकों के बारे में, विवेकानंद जी ने बहुत बहुत कुछ कहा, तो वहां से मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठा कि क्या हम रिलीजन को और अध्यात्म को अलग कर सकते हैं, तो वो चीज मैंने आपसे पूछने की कोशिश की सर
1: जी, जी।
0: चलिए कोई नहीं, ये जैसे मैंने कहा ये बहुत ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, विषय ही बहुत सब्जेक्टिव है, तो इसके बारे में बहुत सारे विचार करने की आवश्यकता है, और सब ठीक है, कोई भी विचार अपने आप में गलत है ही नहीं जब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।

0: सिंह साहब, आध्यात्म की जब हम बात करते हैं, ये जो पूरा विषय, ये जो पूरा पैराडाइम चल रहा है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, वहां दो चीजें आती हैं। नंबर वन ध्यान और दूसरा प्रार्थना, मेडिटेशन एंड प्रेयर। तो इनके बीच में क्या फर्क है सिंह साहब?
1: ओके, देखिए, मेडिटेशन और प्रार्थना ना तो एक दूसरे के पर्याय हैं और ना ही एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब ना सिनोनिम है एक दूसरे के और ना ही वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ध्यान और प्रार्थना में थोड़ा सा अंतर है
0: जी।
1: ध्यान के जरिए आप अपने अवचेतन मन को शांत करते हैं, शांत का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस उसको शांत, जबकि प्रार्थना के जरिए आप अदृश्य शक्ति से ऊर्जा लेते हैं। प्रार्थना को देवी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। प्रार्थना और मेडिटेशन में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये कि प्रार्थना में ईश्वर को स्वयं से अलग माना जाता है और वो आपसे हायर पेडेस्टल पे हैं, इसलिए ईश्वर को आप अलग मानते हैं। लेकिन मेडिटेशन में आप स्वयं को ईश्वरीय अंश का एक हिस्सा मानते हैं।
0: वाह, क्या बात कही, बहुत खूब बहुत खूब। कि मेडिटेशन में, ध्यान में दोस्तों हम ईश्वर के ही एक अंश हैं, और प्रेयर में हम ईश्वर को एक ऊपर शक्ति मानते हुए प्रार्थना करते हैं उनसे, अपने समझदारी के लिए या किसी भी चीज के लिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं
1: जी।
0: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात कही साहब। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस भजन का भी आनंद ले लें।

0: सिंह साहब, क्या आपको ऐसा लगता है, जितना भी आपने बौद्ध धर्म का प्रैक्टिस की, उसको अपनाया, उसे समझा, तो क्या आध्यात्मिकता से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं? क्या ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट हो सकती है? आजकल बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेस की, तो कैन वी यू नो टेक दिस मेडिकेशन ऑफ आध्यात्म?
1: आपने सही पूछा। हमारी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो इतनी बिजी है कि हम बहुत सी मंडेन चीजों के पीछे पड़े रहते हैं
0: जी,
1: और हम हर चीज के बारे में ये सोचते हैं कि इसका यानी मेटीरियलिस्टिक वे में क्या इसका टेक अवे होना चाहिए, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आध्यात्म, एक दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास से आप बहुत कुछ अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी निजी से, मैं फौज में रहा हूं और मैंने हर किस्म का माहौल देखा है, यानी बहुत खराब से खराब भी देखा है, और यानी जहां पे उग्रवाद बहुत चरम सीमा पे था, और डिफिकल्ट जगहों पे सर्व करना, जैसे जंगलों में, डेजर्ट में, हाई ऑल्टीट्यूड में, तरह तरह के लोगों के साथ मिलना जुलना, ये इससे मुझको एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ ही। साथ में कुछ एक मैंने दिमाग में पॉइंट्स है जो कि मैं आपके साथ और जो भी सुनने वाले मित्र लोग हैं उनके साथ साझा करूंगा
0: जी।
1: एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपको अपना स्ट्रेस कम करना हो, स्ट्रेस तो हर एक हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रेस ना हो, तो आप छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखें, जैसे कि माइंडफुलनेस, यानी अगर आप दैनिक काम में काम करते करते थक जाते हैं, ज्यादातर तो मानसिक थकान ही होती है
0: जी,
1: तो आप फिर माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं, यानी जैसे आप अगर आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आपको वर्तमान के कामों पर फोकस होना ये सिखाता है, जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी पर रहेगा ना, आप किसी और बात का ख्याल करके परेशान नहीं करेगा, आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रेशर कुकर में 3 सीटी आ चुकी है कि नहीं करने, मतलब आपका ध्यान उसी रहेगा। तो इस अभ्यास की विशेषता ये है कि ये कहीं भी आप कर सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और आपको वर्तमान में जीना सिखाता है, और वहीं इसके अलावा अगर एक आप बहुत ज्यादा नहीं तो 10 मिनट के छोटे छोटे 2-3 सेशंस आप दिन में करें, है ना, जिसमें कि आप एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, कुछ करें, तो ये आपके मन को शांत और स्थिर रहेगा। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी कि जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है, वो है कि हमको प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए
0: जी,
1: है ना, जैसे आप सुबह सुबह पार्क के अंदर घूमने जाते हैं, जस्ट स्विच ऑफ एवरीथिंग अपने दिमाग से, आप प्रकृति के बीच में हैं, और ये एक यानी मॉर्निंग वॉक फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन का एक प्रकार मॉर्निंग वॉक भी होता है
0: जी,
1: आपकी आंखें खुली हुई हैं, मन पूरी तरीके से ध्यान की अवस्था में है, ये है। तीसरा जो है एक बहुत अच्छा पॉइंट, वो है कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभारी रहें, रोजाना आपकी कई ऐसे काम होते हैं आप दूसरों की मदद लेते हैं, चाहे वो आपका सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आपका धोबी हो, आप समय समय पर उनका आभार व्यक्त करते रहे, बहुत बड़ी बात है ये, इससे न केवल आपका दिल महसूस हल्का महसूस होगा बल्कि आपका माहौल भी बड़ा पॉजिटिव बना रहेगा। और खुद को स्थिर रखने के लिए कुछ साधारण मंत्रों का जाप रखें, यानी वो मंत्र आप कोई भी हो सकता है, तरह तरह के मंत्र होते हैं, मंत्रों की जो ऊर्जा है, देखिए दिस इज वेरी साइंटिफिक, ये हमारे सनातन के ऊपर भी इस पे बहुत कुछ किया गया, कहा गया है, आज से नहीं हजारों सालों से कहा गया है कि जो मंत्र की ऊर्जा होती है, जिसको विच इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअली फिजिक्स, साउंड ऑफ फिजिक्स होती है ये हमारे मन और शरीर पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर डालती है, और अपने मन को आप पॉजिटिव रख सकते हैं, और आसपास की जो वाइब्स हैं वो भी आपके मंत्र जो आप अपने दिल से बोलेंगे उसको वो पॉजिटिव रखेंगे, इस तरीके से कुछ है। और आजकल तो आप देखिए, लोगों से मैं खुद भी जुड़ा हुआ हूँ, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ निशिरन बौद्धिज्म, इसी प्रकार से कई और किस्म की भी आध्यात्मिक कम्युनिटीज हैं, उसके साथ जुड़ना हाँ अच्छा होता है, इसका ऐसा मतलब नहीं कि कोई अपने धर्म के बारे में एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी यू नो जिसमें के अंदर आप मेडिटेशन के बारे में बातचीत हो रही है, कुछ हो रही है, किसी धर्म के बारे में उसमें कोई बात नहीं हो रही है, तो इस किस्म की जो आध्यात्मिक कम्युनिटी है उससे जुड़ना चाहिए, और इससे संबंधित कोई लिटरेचर हो। अब जैसे कि मैं तो अपना उदाहरण दे सकता हूं, मैं जब से बुद्धिज्म से जुड़ा हूं, मेरे पास हर महीने एक किताब आती है इसके संबंध में, सो वैल्यू क्रिएशन बोलते हैं उसको, वैल्यू क्रिएशन पूरे वर्ल्ड के अंदर आती है, खाली ऐसे नहीं, अलग अलग भाषाओं में, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है कि हमें अपने जीवन को, ह्यूमन रिवॉल्यूशन को, ह्यूमन रिवॉल्यूशन मतलब हुआ आज जो हूं कल मुझे अपना ही बेहतर वर्जन चाहिए, मुझे किसी के साथ कोई कॉम्पीट नहीं करना है।
0: जी जी,
1: ये है इस तरीके से हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं।
0: बहुत खूब, बहुत सुंदर, विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। चलिए इस प्यारे से भजन को सुनते सुनते ही मनन करते हैं सिंह साहब ने क्या बताया।

0: और आगे बढ़ते हुए सिंह साहब सजेस्ट कीजिए, आपने तो बहुत दुनिया देखी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस महसूस किया लिया, तो नई जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, जेन जी के लिए आध्यात्मिकता कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड हाउ एग्जैक्टली दे शुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, क्योंकि उनको तो हर चीज बहुत अट्रैक्टिव चाहिए. सो आध्यात्मिकता उनके लिए क्या मीनिंग रख पाएगी, कुछ सजेस्ट कीजिए.
1: जी बहुत सही बात आपने पूछी. अध्यात्म अध्यात्म के ये जो कुछ एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं
0: जी,
1: जो कि इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने कोशिश की है इन चीजों को कंपाइल करने की कि अब जैसे आजकल के दौर में शायद ही कोई ऐसा यंगस्टर होगा जो बातचीत में कर्मा, वाइब्स, एनर्जी, पॉजिटिविटी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करता हो, भले उसे समझ में ना आते हो, लेकिन ये सारे शब्द जो है अध्यात्म से जुड़े हुए हैं
0: जी जी,
1: और इसको लोकप्रिय बनाते हैं. लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि आज का जो युवा जो है, जेन जी की आप बात कर रहे हैं, वो अध्यात्म में क्या क्या नई चीजें सीख रहे हैं. अब 21वीं सदी में क्योंकि अध्यात्म की लोकप्रियता बढ़ी है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर इतने टेंशन बढ़ गए हैं, कॉरपोरेट लेवल पर कॉम्पिटेटिवनेस बहुत बढ़ गई है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा लोगों की, जेलसी भी होती है और लोग दुश्मनी भी निकालते हैं, इस किस्म की तमामों चीजें आपकी सिर के ऊपर रहती है
0: जी.
1: तो 21वीं सदी में जो अध्यात्म की लोकप्रियता इसीलिए बढ़ी है, और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के युवाओं में उन्हें फैशन, हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे जो लेटेस्ट शौक हैं, उसके साथ साथ उन्होंने अध्यात्म को अपने जीवन में एक थोड़ी सी जगह दे दी है, विच इज वेरी गुड. अध्यात्म कुछ लोगों के लिए परेशानी भरे जीवन की जरूरत है, जबकि कुछ लोगों के लिए आकर्षित करने वाली चीज है. तो उसमें से जैसे एक है जो बहुत आजकल चल रही है, उसको बोलते हैं एफर्मेशन.
0: ओके,
1: यस यस. तो आज के वक्त में जब डिजिटल चैटिंग, SMS, WhatsApp वगैरह बहुत लोकप्रिय है, यही कारण है कि लोग इन टूल्स के जरिए पॉजिटिव विचारों को या अलग अलग तरह के कोट्स, इसी बहाने देखिए लोग बात थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, कोट्स को शेयर करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं, चाहे भले ही वो
0: समझ में ना आए करने के लिए
1: जी, और किसी को इंप्रेस करने के लिए हो
0: जी, जी.
1: इसीलिए इससे एफर्मेशन को कुछ बढ़ावा तो मिलता है.
0: हुँ.
1: एफर्मेशन एक ऐसी चीज है समीर जी, जिस

0: या पॉजिटिव चीजें लिखकर, खुद से बोलकर या मन में सोचकर या दूसरों से शेयर करके अपनी पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो एफर्मेशन इसी मॉडर्न पर्सपेक्टिव के अंदर इस्तेमाल होता है हीलिंग क्रिस्टल्स का। आजकल के दौर में एनर्जी रिवाइव करने के बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं
1: जी जी,
0: और इसका कारण है कि बढ़ती हुई मांग, आजकल का युवा कई तरह की मानसिक शारीरिक परेशानियां ट्रॉमा से भी जूझ रहे हैं, लोग के आए दिन ब्रेकअप होते रहते हैं, मतलब देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं, और इसका इलाज फिर अल्टीमेटली कहां ढूंढ रहे हैं, अध्यात्म में। तो इसी में उनको हर एक चीज का एक जरिया होता है, तो उसमें एक क्रिस्टल हीलिंग का भी जो है वो काफी आजकल चर्चा रहती है। वो इसलिए है कि ये हमें पता है कि आज से हजारों साल पहले ही चीज लिखी गई है कि मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिससे शारीरिक मानसिक भावनात्मक ये सारी चीजें उससे कंट्रोल होती है उस चक्रों की ऊर्जा से
1: जी।
0: तो जब भी उन चक्रों में से कोई आउट ऑफ सिंक हो जाता है तब उसको हीलिंग की आवश्यकता होती है। ये हीलिंग क्रिस्टल के द्वारा की जाती है। हालांकि मैं चाहूंगा कि कभी किसी और सेशन में हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यानी डिटेल्ड सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि अभी बात हो रही है जेन ज़ी वालों की, तो उनमें हीलिंग क्रिस्टल का बहुत उपयोग हो रहा है।
1: ओके ओके ओके
0: जी, और
1: ये बड़ी
0: और जी जी, और अगर थोड़ा सा अपने यानी योगाभ्यास में अगर थोड़ा सा लोग पढ़ लें कि कितने किस्म के चक्र होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, तो ये और भी फिर आसान हो जाता है उनके लिए कि हम क्या किस तरीके किस किस्म के क्रिस्टल की जो बात करते हैं, वो अलग अलग तरह के स्टोन्स होते हैं प्रेशर से सनी प्रेशर, तो उनसे किस तरीके से हीलिंग की जा सकती है। ये है
1: अमेजिंग। देखिए दोस्तों, किस तरीके से हम अपने आप को शांत करें, स्ट्रेस फ्री हो, नई जनरेशन किस तरीके से अध्यात्म को अपना सकती है, सिंह साहब ने उसके बारे में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हमें बताया है। चलिए विचार कीजिए, बार बार मैं कह रहा हूं ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा विचार करने का ही है, हमें सिंह साहब जैसे लोगों से उनके विचार सुनने को मिल रहे हैं और हम उन विचारों पर विचार कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेश करता हूं, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन।

0: सिंह साहब, एक थोड़ा सा अटपटा सा सवाल कह लीजिए, या ये सवाल बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में आता ही रहता है लगातार, लेकिन या तो हम पूछने से डरते हैं या सोचने से डरते हैं, आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है? आत्मा होती है क्या सर?
1: जी, बहुत बहुत गहरा सब्जेक्ट है समीर। मैंने इसके ऊपर काफी खुद यानी एक पर्सनल एकेडमिक इंटरेस्ट लेके स्टडी भी किया है, और उसको मैं बहुत बहुत ही छोटे से टाइम है क्योंकि उसमें मैं कोशिश करूंगा बताने की
0: जी,
1: कि इसके ऊपर बहुत से शोध किए गए हैं, बहुत सी रिसर्च वर्क की गई है
0: जी,
1: कि आत्मा का अस्तित्व होता है। पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है, आत्मा का अस्तित्व यानी हर जीवन और हर कर्म में आत्मा की अनंत यात्रा का हिस्सा है। तो इसमें जो साइंटिफिक इसकी जो बैकग्राउंड है वो एक सब्जेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स के अंदर। तो क्वांटम मैकेनिक्स और आत्मा के अस्तित्व के बीच में बड़े बड़े साइंटिस्ट और विचारकों ने एक गहरा संबंध स्थापित किया है। लोग चाहे सुनने वाले तो वो जाकर इसके बारे में गूगल के ऊपर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक कंसेप्ट होता है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ये सिद्धांत ये बताता है कि एक कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ये दो रूपों में अस्तित्व में रह सकता है, एक वेव्स के रूप में और एक सॉलिड के रूप में, यानी एक तरंग के रूप में और एक ठोस कण के रूप में। इसी प्रकार मानव का अस्तित्व भी केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के रूप में एक नॉन फिजिकल अस्तित्व भी है
0: जी।
1: यानी जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है, जिंदगी खत्म नहीं आती है
0: जी,
1: ये ध्यान रखना, जो हमारा फिजिकल सेल्फ जो है वो खत्म हो चुका है, यानी हम जिस मिट्टी से आए उसी मिट्टी में चले गए वापस
0: जी,
1: लेकिन जो हमारे अंदर से बाहर निकली वो आत्मा है। वो आत्मा नॉन फिजिकल, और फिर वो एक किसी नए शरीर को ढूंढता है जी। इसी तरीके से दूसरा एक जो लॉजिक है उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये दर्शाता है कि जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वही वास्तविकता को प्रभावित कर सकती है। ये आत्मा के अस्तित्व का संकेत देता है, क्योंकि चेतना किसी भी भौतिक संरचना है ना, जैसे कि मस्तिष्क हुआ, फिजिकल चीज हुई ना
0: जी,
1: के परे भी कार्य करता है।
0: Alright, okay.
1: इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो ट्यूबुल और आत्मा। वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया है कि हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन के अंदर माइक्रो ट्यूबुल में क्वांटम लेवल की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि आत्मा इन सूक्ष्म संरचनाओं में भी विद्यमान होती है। तो टोटल निष्कर्ष ये निकलता है आत्मा के अस्तित्व के बारे में कि आत्मा का अस्तित्व एक संभावित वैज्ञानिक वास्तविकता है। ये केवल धार्मिक या दार्शनिक विश्वास तक ही सीमित नहीं है, ये साइंटिफिक रियलिटी है ये।
0: ऑलराइट, सो जैसा सिंह साहब ने बताया, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स और इन तरीके के पैरानॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को समझने की रिसर्च लगातार चालू है। जैसा सिंह साहब ने बताया, पार्टिकल एंड वेव इफेक्ट, टाइम एंड स्पेस एक साथ एग्जिस्टेंस में कभी नहीं होता, या तो टाइम होगा या स्पेस होगा। फिर इसके बाद पार्टिकल इफेक्ट एंड वेव इफेक्ट के बारे में भी सिंह साहब ने हमें डिस्क्राइब किया। इसके बारे में और अगर जानकारी चाहिए हो दोस्तों, तो हम लोग गूगल कर सकते हैं, नहीं तो सिंह साहब से भी संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं पेश करता हूं ये प्यारा सा, प्रस्तुत करता हूं ये प्यारा सा भजन। सोचिए, विचार कीजिए और इसके साथ आनंद लीजिए।

0: बहुत बहुत ही सुंदर। सिंह साहब, क्या पुनर्जन्म पर विश्वास रखते हैं आप, या कर्म सिद्धांत में विश्वास रखते हैं? आई मीन, दोबारा से जन्म लेना एंड जो भी हमने किया उसका क्या फल में मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि पुनर्जन्म या कर्म सिद्धांत के बारे में। देखिए, गीता और उपनिषद पुनर्जन्म को केवल एक धार्मिक विचार नहीं मानते, बल्कि जीवन और आत्मा की अनिवार्य सच्चाई मानते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को केवल विश्वास कह के नकारा नहीं जा सकता। ये आत्मा की अमरता, कर्म का न्याय और मोक्ष की आकांक्षा, इन तीनों चीजों का संगम है। आपने देखा होगा अक्सर सच्ची कहानियां हम लोग के आंखों के सामने आती रहती है कि फला फला परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और जब वो 4 या 5 साल का हुआ तो उसको बोध हुआ कि पिछले जन्म में उसकी मृत्यु फला फला वजह से हुई थी, या तो नेचुरल या अननेचुरल, और उसके परिवार के लोग अभी भी हैं और ये बात सच निकलती है
0: जी।
1: तो ये पुनर्जन्म की ही तो बात है, यानी आप अपने पुराने जीवन से आप क्या चीज लेके आए, अपने अपने कर्म आप लेके आए हो जिनका हिसाब किताब आप इस जन्म के अंदर दोगे। और कई लोग की जो जो मन होता है, देखिए आप जब आत्मा की बात करते हैं तो ये बेसिकली मन के बारे में बात कर रहे हैं
0: जी,
1: वही चीज ट्रांसफर होके एक नए शरीर के अंदर नए शरीर को धारण कर लेती है। तो पुनर्जन्म है, बिल्कुल होता है।
0: और कर्म प्रधान, मतलब जैसे हम जो भी काम करते हैं उसके फल के बारे में, कई लोग कहते हैं कि इसी जन्म में हमको फल मिल जाएगा, कुछ लोग कहते हैं जो आपने इस जन्म में किया उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट?
1: जी जी, देखिए ऐसा है समीर के स्वर्ग और नरक सब कुछ यहीं पर है, ये हमारा एक्सपीरियंस बताता है। अब किसी को स्वर्ग का एक्सपीरियंस इससे मिलता है कि भाई यानी उसको सारे हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई
0: जी,
1: तो उसको स्वर्ग मिल गया, या उसके अपने कर्मों की वजह से यानी उसने नीच कर्म किए या कुछ किए तो उसका उसका फल मिल गया। आपने किसी के साथ गलत किया तो उस चीज आगे, हम एक बड़ी अच्छी कहावत है, कर्मा स्ट्राइक्स बैक। आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, आपने एक के साथ किए हैं वो कई गुना बढ़ के आपके पास आता है, आपने गलत कर्म किए हैं तो वो भी कई गुना बढ़ के आपके पास यानी मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आ जाते हैं।
0: ओके,
1: और निचिरेन बुद्धिज्म के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई गई है कि किसी भी मनुष्य के जीवन के अंदर वो 10 तरह के यानी लाइफ स्टेट्स, उनको बोलते हैं वर्ल्ड, 10 वर्ल्ड्स, 10 तरह के जो वर्ल्ड्स होते हैं वो उनमें ऊपर नीचे जाता रहता है, यानी फ्रॉम द स्टेज ऑफ हेलिश एक्सपीरियंस टू अटेनिंग बुद्धाहुड। बुद्धाहुड अटेंड करने का मतलब कि आप हर चीज से परे हो गए, आप बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि भगवान बुद्ध को एक उसकी प्राप्ति हो गई थी, उनको एक ऐसा परमात्मा वाला ज्ञान हो गया था कि उसके आगे कुछ नहीं चाहिए था। तो ये हमारी 10 अवस्थाएं हैं जिनके बीच में हम ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारे सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। कई बार ऐसा होता है और ये माना भी जाता है और होता भी है कि हमारे जब आखिरी यानी हमारा फिजिकल सेल्फ, हमारा शरीर जब खत्म होने वाला होता है उस वक्त हमारे कर्म कैसे हैं, यदि उस वक्त भी हम पाप कर रहे हैं तो वो एक बुकमार्क बन जाता है। समीर जी, मेरी अपनी थ्योरी है कि वो एक बुकमार्क होता है और उसी बुकमार्क पे आपका अगला जीवन खुलता है।
0: Okay.
1: आपने गलत, आपके आखिरी टाइम में जिस स्टेट में है आप, जो लाइफ स्टेट में है, उस लाइफ स्टेट को आप एक समझिए कि भगवान बुकमार्क रख देता है। हम यहाँ पर बात करते हैं यूनिवर्स की, क्योंकि निराकार ब्रह्म के पास ना है, तो जो यूनिवर्स है वहां पे एक लगाते हैं, कहता है बेटा अब जो नया तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो रहा है क्योंकि तुमने पिछले जन्म में कुकर्मों का मतलब आपने खदान खोद दी थी पूरी है, और अब यहां से अब ये आप पे निर्भर करता है। भगवान जो है वो कभी किसी से नफरत नहीं करता है, अभी डिपेंड करता है कि आप उस स्टेट से ऊपर जाने के लिए क्या क्या करोगे। तो मैंने बताया कि आपने गलत काम किए, आके जब आपने अपने प्राण छोड़े उस वक्त आप जो है को बहुत बड़े माफिया थे, बहुत बड़े डाकू डकैत जो भी रहे आप, जब आपका अगला जन्म होगा तो अगले जन्म में आपको उस सब चीज को ठीक करना होगा।
0: ओके,
1: क्योंकि आपका बुकमार्क वहीं से शुरू हो रहा है
0: जी।
1: तो
0: दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से इसको कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ते हुए आपने हमें बताया है, तो जाहिर सी बातें जरा ज्यादा ठीक से समझ में आती है बात, बहुत ही। चलिए दोस्तों एक और प्यारा सा भजन प्रस्तुत करता हूं।
2: रेडियो टंटिया भील, आपके झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 90.8 FM। सुनते रहिए आपके झाबुआ की आवाज।

0: बहुत सब बहुत खूबसूरत है सिंह साहब। जाहिर सी बात है डेविल्स एडवोकेसी बहुत इजी होती है, कोई भी दसियों तरीके के यक्ष प्रश्न खड़े कर सकता है। तो क्या कभी कोई ऐसा समय आपकी जिंदगी में भी आया जब आध्यात्मिकता से स्पिरिचुअलिटी पर आपको संदेह हुआ, शक हुआ, उसको नकार देने की इच्छा हुई? क्या समय कोई ऐसा आया था, और अगर आया तो आपने क्या किया फिर?
1: देखिए मेरा ऐसा सोचना इसके बारे में
0: जी
1: कि आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो आत्म परिवर्तन स्वाभाविक है ना, मतलब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। हालांकि इसके लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, और अगर एक्सपेक्टेड परिणाम तुरंत नहीं मिलते हैं तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं
0: जी।
1: एक बहुत स्वामी जी हैं,

0: मुकुंदानंद
1: जी,
0: वो ये बताते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर उत्साह का क्या महत्व है और हम हर समय अपने आप को कैसे प्रेरित रख सकते हैं। वो तो उनके विचारों से मैं सहमत हूं और मैंने देखा है कि ये अपनी जिंदगी में भी इस चीज का जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है कि आध्यात्मिक यात्रा कठिन तो है, हमें आंतरिक परिवर्तन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और किसी कार्य को करने की जो मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा, वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि हमारी जो बुद्धि है उसे कितना महत्व दे रही है। तो हम अपने आध्यात्मिक प्रयासों में तभी उत्साहित रहेंगे अगर हम दो चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जान रहे हैं। पहला कि मानव जीवन अनमोल है, दिस ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस
1: जी।
0: लोग कहते हैं ना कि हजारों योनियों में जन्म लेने के तब मनुष्य जन्म में योनि तब मनुष्य योनि के बाद जन्म होता है, तो भाई उसको वेस्ट मत करो। दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि जो मानव जीवन है ये अस्थाई है, नथिंग इज परमानेंट। तो आप सोच रहे हो तो दुनिया भर के तो प्लान बनाते रहो, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, लेकिन जीवन तो वही है ना 80-90-100 साल के अंदर, ये अस्थाई जीवन है। लेकिन वो जो जीवन है वो बहुत अनमोल है, तो जो चीज अनमोल है उसको आप बहुत सोच समझ के आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। और ये वही बात है कि आपके पास सब तरह के साधन है, आप उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केवल आप ही उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपकी वजह से बाकी कुछ और लोगों को भी चीज का फायदा मिलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी महंगी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, उस गाड़ी में 5 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, वो कोई व्यक्ति है जिस बेचारे को अपने स्थान पे जल्दी पहुंचना है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं रोक के कहूँ भाई साहब बैठ जाइए, मैं भी उसी रास्ते जा रहा हूँ। ये चीजें लोग करते नहीं है लेकिन करना चाहिए। तो इससे उससे क्या होता है, आपका जो विश्वास है आध्यात्म के अंदर वो बना रहता है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी संगति, मेरा माहौल और मेरे माँ बाप के द्वारा दिए संस्कारों ने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कभी कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है इसमें मुझे कोई शक होना चाहिए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस तरीके का भाग्यशाली होना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, लेकिन फिर भी हर समय भाग्यशाली होने की कोशिश ना भी करके हम उसकी तरफ थोड़ी कोशिश भी कर सकते हैं। तो हर समय भाग्य को पकड़ के ना चलें और कुछ कर्म की तरफ भी ध्यान दें। बीडी सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सारी चीजें बिल्कुल खुल के सामने आई, आपके विचार, आपकी बहुत सारी प्यारी प्यारी सलाहें, हमें प्रैक्टिकल सलाहें, प्यारी प्यारी तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल सलाह होना बहुत जरूरी होता है कि क्यों हम अपनी जिंदगी में उसे उतार सकें, उनकी प्रैक्टिस कर सकें, हमें आज पता चली। आपका बहुत बहुत आभार सर। चलते चलते बस आध्यात्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर क्या कहना चाहेंगे हमारे मित्रों को?
0: कुछ एक बातें दिमाग में रखिए कि अपने पॉजिटिविटी के मदद से किसी भी चीज को कब फुल स्टॉप करना है वो जरूर ध्यान में रखिए। हमें हर चीज करें, यानी हर चीज की एक फाइनाइट लिमिट होती है, उसको हमेशा ध्यान में रखें। और जब कोई सिचुएशन आए ऐसी कि जिसमें आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, तो अपने आप को परमात्मा से जोड़ें और आपको सोल्यूशन मिलेगा। द एंटायर यूनिवर्स विल कम बाय योर साइड, और जो आपके कंफ्यूजन है आपको उसका हल भी खुद ही मिल जाएगा। और इसके लिए धैर्यता के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी और रियलिटी के लिए अपने थॉट्स को क्रिएट करके रखें, और तभी हो सकता है जब आप ट्रूली ये सारी प्रैक्टिसेस करें जो हमने अभी डिस्कस की हैं अबाउट अटेनिंग स्पिरिचुअलिटी।
1: वाओ, बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। इन पॉइंट्स को विचार में रखते हुए, बार बार मनन करते हुए, हम तयशुदा तौर पर अध्यात्म की तरफ और अपने कदम बढ़ाएंगे, शांति पाएंगे। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू समीर। जय हिंद।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। एक आम, तीन दोस्त और एक लेजेंड की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक छोटे से आम से शुरू होती है, बट एंड बिल्कुल आम लोगों पे नहीं होती। ये कहानी खत्म होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक नाम पर रुक जाइए, ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। इसमें है बचपन की शैतानी, फॉरबिडन जंगल जैसे पेड़, दूरदर्शन का एक संडे और एक मिशन इम्पॉसिबल। बीच में एक छोटा सा लड़का जिसकी एनर्जीज इतनी ज्यादा थी कि अगर उसे चैनलाइज नहीं किया जाता तो शायद कॉलोनी ही हिल जाती। 80s का संडे, एक सेक्रेट रिचुअल। दोस्तों, आज के बच्चे समझ ही नहीं सकते कि संडे आफ्टरनून का मतलब क्या होता है। एक ही चैनल दूरदर्शन और एक ही इवेंट संडे की मैटनी फिल्म। पूरा परिवार सोफे पर, पड़ोसी भी आ जाते थे कभी कभी, और अगर मूवी अच्छी हो तो साइलेंस ऐसा होता जैसे एग्जाम चल रहा हो। उस दिन चल रही थी गाइड और बैकग्राउंड में बज रहा था आज फिर जीने की तमन्ना है। बाहर का महा साइलेंस, कॉलोनी का ग्राउंड बिल्कुल खाली, ना क्रिकेट ना साइकिलिंग, बस हवा चल रही थी और पेड़ हिल रहे थे। पर एक बेंच के पास तीन शैडोज बैठी हैं, सुनील, अविनाश और एक छोटा सा लड़का, छोटा साइज पर फुल पावर। नाम सचिन। सचिन मतलब फुल ऑन एनर्जी पैकेट। अगर आप उसे 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ दो तो या तो वो कुछ तोड़ देगा या फिर कुछ नया कर देगा। अब कॉलोनी में कुछ बड़े बड़े आम के पेड़ थे, उन पे आम लगते थे, रस भरे, टेम्प्टिंग। पर रूल ये था कि उसे टच भी नहीं करना। और दोस्तों, जब किसी बच्चे को बोलो ये मत करो तो उसका मतलब होता है बस यही करना है। सचिन उन पेड़ों को रोज देखता था जैसे कोई एक्सप्लोरर एवरेस्ट को देखता हो। सुनील धीरे से कहता है, सब लोग टीवी देख रहे हैं। अविनाश कहता है, ये परफेक्ट चांस है। सचिन की आंखों में एक चमक आती है, मिशन आम। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है, आज फिर जीने की तमन्ना है। और सचिन, देखा, यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहा है। तीनों धीरे धीरे पेड़ के पास जाते हैं जैसे आर्मी ऑपरेशन हो। सचिन सबसे आगे, मैं लीड करूंगा। सुनील, तू सबसे छोटा है। सचिन बोलता है, इसीलिए तो सबसे फास्ट हूं। और चढ़ाई शुरू, एक ब्रांच, दो ब्रांच, सचिन ऑलमोस्ट टॉप पे, आम बिल्कुल सामने, और उसका एक्सप्रेशन, आज हिस्ट्री लिखनी है भाई। और तभी सुनील भी सेम ब्रांच पर चढ़ जाता है। ब्रांच सोचती है, भाई मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूं। क्रैक, और फिर ग्रेविटी का फुल डेमोन्स्ट्रेशन, थार, धूम, धपाक, पूरी कॉलोनी बाहर, टीवी बंद, गाइड पॉज। ये आवाज कहां से आई?
और वहां सचिन और उसकी टीम आम के नीचे उफ पड़े हुए, आम के नीचे। पेरेंट्स का एक्सप्रेशन, बेटा आज तो तुम गए। घर पे इमरजेंसी मीटिंग बैठती है, मम्मी बोलती है ये लड़का रुकता ही नहीं है। पापा, पापा कहते हैं इसकी एनर्जी बहुत है। और भाई कहता है डायरेक्शन जीरो है। सचिन क्वाइटली, पर आम मिल जाता। और तब एक डिसीजन होता है, इसको किसी स्पोर्ट्स में डालो, इसकी एनर्जी को यूज करो। नेक्स्ट मॉर्निंग सचिन को ले जाया जाता है एक क्रिकेट कोचिंग कैंप में। सचिन बोलता है ये क्या है, मैं आम के लिए गया था, ये बात कहां से आ गई। कोच ऑब्जर्व करते हैं रमाकांत आचरेकर जी, उनकी नजर अलग थी। उन्होंने देखा एनर्जी, फोकस, जुनून, और उन्होंने डिसाइड किया ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। सचिन बैटिंग करता है। पहला शॉट थोड़ा ऑकवर्ड, दूसरा शॉट बेटर, और तीसरा शॉट परफेक्ट टाइमिंग। और धीरे धीरे वो एनर्जी जो पेड़ पे चढ़ रही थी अब बॉल के पीछे दौड़ रही थी। दोस्तों जरा सोचिए, अगर वो आम का पेड़ नहीं होता, अगर वो गिरता नहीं, और अगर पेरेंट्स परेशान नहीं होते, तो शायद उन एनर्जीज को डायरेक्शन ही नहीं मिलता। कभी कभी हमारी शैतानी, हमारी गलतियां हमारी डेस्टिनी का शॉर्टकट होती हैं। और फिर क्या हुआ वो सब जानते हैं। एक छोटा लड़का जिसे आम चाहिए था एक दिन दुनिया का फेवरेट बन गया। लोग उसका नाम लेते ही स्माइल करते हैं, रिस्पेक्ट फील करते हैं। दोस्तों जिंदगी कभी कभी बहुत सिंपल सिग्नल्स देती है। एक आम, एक गिरना, एक दांत, और उसके पीछे छुपा होता है एक बड़ा सा फ्यूचर। आपकी लाइफ में कोई आम मोमेंट था, कोई शैतानी जो ब्लेसिंग बन गई, या कोई गिरना जो डायरेक्शन बन गया? जरा सोचिए, शायद आपका भी वो मैंगो मोमेंट है जो आपको कहीं ले जाने वाला है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली स्टोरी तक याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा आम एक पूरी कहानी लिख देता है जो बिल्कुल आम नहीं होती, बहुत खास होती है, जैसे कि आप। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: टाइपिंग वाले आर्टिस्ट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट, एक मिनट। टाइपिंग डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट, दो मिनट। और मैसेज आता है इतना बिल्डअप तो किसी फिल्म के ट्रेलर में भी नहीं होता।
2: लिखे

एक फैसला, एक प्यार और एक कहानी जो दुनिया बदल गई। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है। एक ऐसा सफर जहां जिंदगी, कानून, प्यार और किस्मत सब एक ही लाइन पे मिल जाते हैं। और बिलीव करिए, इसका एंड आपको सरप्राइज ही नहीं, हैरान कर देगा। एक आदमी जो कभी पकड़ा नहीं गया। सोचिए, रात का वक्त है, शंघाई की सड़कें, बारिश की हल्की सी बूंदें, लैंटर्न्स हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं और उन्हीं रोशनियों के बीच एक आदमी चल रहा है। उसकी चाल सीधी है पर उसका रास्ता कभी सीधा नहीं रहा। नाम फैंग डाओलोंग, पर असली बात यह है कि उसका कोई एक नाम नहीं था। दिन में कार्गो शिप पे काम करता था एक आदमी, साइड में स्मगलर और असली सच एक सीक्रेट एजेंट। एक ऐसा आदमी जो अपनी जिंदगी खुद भी नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो हर रोज किसी और की जिंदगी जी रहा होता था। फैंग के लिए हीरो बनना जरूरी नहीं था, जिंदा रहना जरूरी था। उस पर हमले हुए, धोखे हुए और कई बार उसकी मौत का प्लान बनाया गया, पर वो बच गया। कैसे? क्योंकि वो लड़ता नहीं था, वो समझता था और निकल जाता था। इसलिए लोग कहते थे वो आदमी नहीं, एक साया है। 29 इयर्स की उम्र में फैंग सब कुछ छोड़कर शंघाई आ जाता है। नया शहर, नया नाम और नई जिंदगी, और वो है पोर्ट ऑफिसर। आईनी देखिए, जो आदमी कल तक इलीगल चीजें ले जाता था वो आज उन्हें रोक रहा है पोर्ट ऑफिसर बनके। पर दोस्तों, पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, ये हम सब जानते हैं। वो बस थोड़ा धीरे चलने लगता है। इसी शहर में एक और कहानी लिखी जा रही है। एक औरत, नाम है लिली। उसकी आंखों में शाम का साया है और आवाज में थोड़ी सी थकान। वो स्ट्रांग है पर टूट चुकी है। सिंगल मदर, दो बेटियां और जिंदगी का हर बोझ अकेली उठाती है। लिली गैम्बलर थी और वो जीतने की आदत डाल चुकी थी। लोग कहते थे इसके हाथ में जादू है, पर जिंदगी का एक रूल होता है, हाउस ऑलवेज विंस। और एक दिन जिंदगी जीत जाती है। कर्ज, लोगों का प्रेशर और घर में दो छोटी बेटियां, लिली के पास अब ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ मजबूरी है। उसे ऑफर मिलता है, एक काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा, ओपियम स्मगलिंग। एक रात, एक शिप और एक रिस्की सफर। लिली सोचती है और फिर हां कह देती है। पोर्ट पर रश है, लोग भाग रहे हैं। लिली बैग लेकर आगे बढ़ती है। बैग चेक होगा, वो रुक जाती है। ऑफिसर कौन है जानते हैं? जी हाँ, फैंग डाओलोंग। बैग खुलता है, अंदर ओपियम। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, अरेस्ट, जेल और दी एंड। पर कहानी यहां से शुरू होती है दोस्तों। फैंग पूछता है, ये क्यों कर रही हो? लिली कहती है, दो बेटियां हैं मेरी। उसकी आंखों में ना ड्रामा है ना एक्टिंग है, सिर्फ सच्ची आंखें हैं। फैंग चुप हो जाता है, क्योंकि उसने भी मजबूरी देखी है। और फिर वो साइड हो जाता है, चली जाओ, बस इतना ही कहता है। ना लेक्चर, ना वार्निंग, सिर्फ एक चांस। महीने बीत जाते हैं। एक रात, एक क्लब, म्यूजिक, स्मोक और बीच में लिली। फैंग उसे देख लेता है और दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर मिलना, फिर बातें, फिर अपनी कहानियां शेयर करना। और धीरे धीरे दो लोग जो बस सरवाइव कर रहे थे, जीना सीख लेते हैं। 1949, शहर बदल रहा है, पावर्स शिफ्ट हो रही हैं और फैंग जैसे लोग डेंजर में हैं। उन्हें भागना है और इस बार वो अकेला नहीं है। फेक नाम, फेक जिंदगी, रात के अंधेरे में वो भागते हैं हांगकांग की तरफ।
अब ना स्पाई मिशंस, ना थ्रिल, सिर्फ रियलिटी। फ्लोर साफ करना, डिशेस धोना और चुप रहना। कभी कभी पास्ट याद आता है, पर वो बस एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा पैदा होता है, उसी गरीबी में पर उम्मीद के साथ, उनका बेटा। आप सोच रहे होंगे ये तो परफेक्ट फिल्म है, पर दोस्तों ये फिल्म नहीं है, ये सच्चाई है। और वो बच्चा जो इतनी मुश्किलों में पैदा हुआ, वो बड़ा होके बना जैकी चैन। सोचिए, अगर उस रात फैंग ने लिली को अरेस्ट कर लिया होता तो क्या होता? ना ये कहानी होती, ना ये प्यार होता और ना ये सुपरस्टार होता। जिंदगी में कभी कभी हीरो बनना जरूरी नहीं होता, इंसान बनना जरूरी होता है। कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन दुनिया को एक लेजेंड दे देता है। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। अगली कहानी तक याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है और हर इंसान के पीछे एक सैक्रिफाइस जरूर होता है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: फ्री वाईफाई लवर्स, कुछ लोग जगह नहीं देखते, बस फ्री वाईफाई देखते हैं। यहाँ व्यू कैसा है, होटल रूम कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। चेक इन करते ही उनका पहला सवाल होता है, फ्री वाईफाई का पासवर्ड क्या है।
2: What?

जब कचरा कहानी बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी अलग इसीलिए है क्योंकि थोड़ी अजीब है और सच कहूं थोड़ी सी शर्मिंदा करने वाली भी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन चीजों की जो हम रोज फेंक देते हैं और उन लोगों की जो उनमें भी कहानियां ढूंढ लेते हैं। सोचिए, सुबह के 4 बजे का टाइम, ना ट्रैफिक ना हॉर्न, बस हल्की सी ठंडी हवा और स्ट्रीट लाइट्स का पीला सा उजाला। और इसी वक्त एक आदमी चल रहा होता है हाथ में ग्लव्स लिए, पीछे एक कचरे की गाड़ी, नाम मुस्तफा। अब मुस्तफा कोई आम इंसान ही है लेकिन उसकी सोच बिल्कुल आम नहीं है। आप और मैं डस्टबिन के पास से गुजरते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फेस साइड कर लेते हैं, पर मुस्तफा वो रुकता है, झांकता है और ध्यान से देखता है। उसे क्या दिखता है? किताबें। जी हाँ, किताबें। एक दिन एक पुरानी सी नॉवल, हाफ टोन कवर, पेजेस मुरझाए हुए, जैसे किसी ने थक कर उसे छोड़ दिया हो। मुस्तफा उसे उठाता है और एक सेकंड के लिए रुकता है। कल तक किसी के हाथ में थी, आज कचरे में है। वो उसे घर ले जाता है, रात को पढ़ता है और खुद से सोचता है, कहानी तो अब भी जिंदा है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। हर दिन एक नई किताब, कभी स्कूल बुक, कभी पोएट्री, कभी हिस्ट्री, और मुस्तफा हर किताब को ट्रीट करता है जैसे किसी ने उसे पर्सनली दी हो। एक दिन उसका दोस्त बोलता है, मुस्तफा भाई, तुम कचरा उठाते हो या पढ़ाई करते हो? मुस्तफा हंस के कहता है, दोनों, दिन में काम, रात में उसके सपने। सब हंसते हैं, पर धीरे धीरे वो भी नोटिस करते हैं कि मुस्तफा सिर्फ बुक्स नहीं उठा रहा, रिस्पेक्ट उठा रहा है। नेक्स्ट डे एक कोवर्कर एक बुक साइड में रख देता है, ले तेरे लिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर धीरे धीरे ये एक आदमी का शौक नहीं, एक टीम का मिशन बन जाता है। कभी कभी उनके बीच फनी बातें होती हैं, ये हॉरर बुक है, तू ले जा, तू ऑलरेडी स्कैरी है,

ये रोमांस नॉवल है, इसको मुस्तफा को दो, उसकी लाइफ में थोड़ा रोमांस आए। और सब हंसते हंसते बुक्स कलेक्ट करते जाते हैं। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, बुक्स बढ़ने लगती हैं। मुस्तफा के घर का हाल, बेड के नीचे बुक्स, अलमारी में बुक्स, किचन शेल्फ पे बुक्स। उसकी वाइफ, ये घर है या सेकेंड हैंड लाइब्रेरी? मुस्तफा कहता है, ये फ्यूचर का म्यूजियम है। टीम समझ जाती है अब स्पेस चाहिए, तो क्रिएट करते हैं। और उन्हें मिलती है एक पुरानी डस्टी अबंडेंट फैक्ट्री की जगह, जो पहले गार्बेज ट्रक्स के लिए यूज होती थी। उन्होंने फैक्ट्री साफ की, पेंट की, शेल्फ्स बनाए और बुक्स अरेंज की। धीरे धीरे कचरे की जगह कहानियों का घर बन गया। 2018 में ये लाइब्रेरी ओपन होती है, पर ये सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये एक मैसेज है कि कुछ भी बेकार नहीं होता। एक छोटी लड़की आती है, अंकल ये बुक्स फ्री हैं? मुस्तफा मुस्कुराता है, नॉलेज फ्री होती है बेटा। उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और फिर उस मोमेंट मुस्तफा समझ जाता है कि ये सब कुछ वर्थ इट था। फिर वो लोग रुकते नहीं, हर जगह बुक्स पहुंचनी चाहिए और स्टार्ट होता है एक मोबाइल लाइब्रेरी का मिशन। गाड़ी में बुक्स, गांव गांव तक नॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इवन प्रिजन्स तक ये कहानियां, ये किस्से और ये किताबें पहुंचती हैं, क्योंकि कहानी हर जगह जरूरी होती है। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है जानते हैं? ये नहीं कि बुक्स बची, ये नहीं कि लाइब्रेरी बनी, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, जिन लोगों को सोसाइटी इग्नोर करती है, वो लोग नॉलेज के रक्षक बन गए। हम क्या करते हैं? पुरानी बुक्स फेंक दो, पुराने कपड़े फेंक दो, पुराने रिश्ते छोड़ दो। पर मुस्तफा, वो कहता है, देखो तो सही इसमें क्या बचा है। दोस्तों, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चीजों की कीमत देखते हैं और दूसरे जो चीजों की कहानियां देखते हैं। और जो कहानी देख लेता है वो कभी किसी चीज को कचरा नहीं कहता। आपने लास्ट टाइम क्या फेंका था? कोई किताब, कोई सपना या कोई रिश्ता? और अगर आज मुस्तफा होता तो शायद वो कहता, इसे मत फेंको, इसमें भी कहानी बाकी है। मैं हूं आपकी दोस्त, और अगली कहानी तक याद रखिए, कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कचरे से ही मिलती है। नमस्कार।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: लोग एडवाइस फ्री में देते हैं, पर गलतियां हम खुद करके सीखते हैं। मतलब गाइडेंस अनलिमिटेड है, पर समझ थोड़ी लिमिटेड। फ्री एडवाइस और पेड मिस्टेक्स।

0: तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।
1: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है नन्हे मुन्नों के लिए कार्यक्रम बाल गीत। आज सबसे पहले सुनते हैं ये गीत, शीर्षक है हाथी।
2: हाथी के हैं कान बड़े, हाथी के हैं दांत बड़े,

अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर राम जन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, काव्य रचना प्रोफेसर कृष्ण गोपाल रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, संगीतकार महेश प्रभाकर, गायन स्वर देवाशीष धीरा घोष, अनुपमा मेघा, दीक्षा संस्कृति राशि और अनुराग, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है संगीत की दुनिया का सतरंगी रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज की शख्सियत केवल एक नाम नहीं, एक यात्रा है। वर्दी से सुरों तक की यात्रा, कानून व्यवस्था से कला संवर्धन तक की यात्रा, 1989 में डीवाईएसपी के रूप में पुलिस सेवा की शुरुआत, 2003 आईपीएस बैच, राजस्थान के अनेक जिलों में ऐतिहासिक कार्यकाल, 800 किलो से ज्यादा नारकोटिक्स की जब्ती, कई ब्लाइंड मर्डर सुलझाए और छोटी सादरी जैसे पुलिस जनसंवाद के अभिनव प्रयोग किए। लेकिन इस दृढ़ और अनुशासित अधिकारी के भीतर एक संवेदनशील हृदय भी धड़कता रहा, जो संगीत, गजल, शायरी और संस्कृति से प्रेम करता था। 2013 की एक शाम दोस्तों के बीच उठी एक सरल सी बात, आज एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक आंदोलन बन चुकी है, सृजन द स्पार्क। भारत के 12 शहरों में अध्याय, यूएसए, यूके और कनाडा तक विस्तार, 400 से अधिक वैश्विक ऑनलाइन प्रस्तुतियां, और अब उदयपुर में एक वैश्विक संगीत संस्थान का स्वप्न, एपिटोम ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। आज हमारे साथ हैं सेवा, संवेदनशीलता और सृजन के अद्भुत संगम रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर तथा चीफ पैट्रन प्रसन्ना कुमार जी खमेसरा। खमेसरा जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: आलोक जी नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, तथा मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप अपने रेडियो स्टेशन के माध्यम से कुछ लोगों को जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनको सामने लाने का कार्य कर रहे हैं।
1: चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत शुरुआत से ही करते हैं। उदयपुर में आपका कदाचित बचपन बीता रहा है, तो कैसा रहा, क्या घर का माहौल था, क्या घर में भी संगीत और संवेदनशीलता को आकार दिया आपके बचपन ने, कुछ उसके बारे में छोटी बड़ी बातें हमें बताइए।
2: जहां तक मेरे परिवार और बचपन की बात है, मेरे ग्रैंडफादर दादाजी आजादी के पहले बीएससी और एलएलबी किए हुए थे। उन्होंने जयपुर महाराजा कॉलेज से बीएससी किया था, रहने वाले उदयपुर के हैं, लेकिन यहाँ आके उन्होंने बीएससी करके इंदौर से एलएलबी किया था। इसी तरीके से फादर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी में रहे। अच्छा। फादर की पोस्टिंग राजस्थान के विभिन्न शहरों में अलग अलग जगह रही, तो इसलिए मेरा बचपन भी कभी फालना, कभी डूंगरपुर, कभी निम्बाड़ा, इस तरीके से व्यतीत हुआ। और उसके बाद में नवी के बाद में मैं उदयपुर बाबा जी के साथ, फैमिली के साथ जब हम लोग उदयपुर आए, तो वहां से मेरा ग्रेजुएशन उदयपुर का है। और उसके बाद में मैंने एमबीए भी सुखड़ी यूनिवर्सिटी उदयपुर से उस वक्त किया था 87 में।
1: जी चलिए, तो उदयपुर से ही आपका बहुत साफ का रहा है। तो फिर आपने एमबीए की शिक्षा भी ली और खेलों में भी आपकी रुचि थी, तो क्या इन दोनों चीजों ने, शिक्षा और खेलों ने, आपके जीवन को कुछ संतुलन दिया, कुछ दोनों चीजों में इंटरेस्ट आपका रहा है, तो कुछ उसके बारे में बताइए।
2: जी ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हमारी लाइफ का रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स मेरे लिए बहुत बचपन से ही बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है, और इसी के साथ पढ़ाई में भी। और मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि न केवल पढ़ाई में हम लोग क्लास में काफी आगे रहे, बट विभिन्न खेलों के माध्यम से सभी लोगों के साथ में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे हॉकी हो, तो इसको कॉलेज लेवल पर रिप्रेजेंट करने का मौका मिला।
1: भाई ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्रिकेट और हॉकी दोनों आप खेलते थे। नॉर्मली लोग क्रिकेट खेलते हैं तो हॉकी नहीं खेलते, हॉकी खेलते हैं तो क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन आप दोनों खेलते थे, तो बहुत ही खूबसूरत बात है। तो क्रिकेट और हॉकी की बात पे खमिश्रा साहब हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा संगीत को भी अपने कार्यक्रम में लाते हैं और एक गाने के लिए रुक जाते हैं, एक छोटा सा अंतराल लेते हैं, फिर आगे बातचीत करेंगे। और आगे हम बातचीत करेंगे आपसे, आपके जो डिस्टिंग्विश्ड पुलिस कैरियर है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करें।

0: 1989 से आईपीएस तक की यात्रा, कौन सा मोड़ आपको सबसे निर्णायक लगता है? तरह तरह की मोड़ आए होंगे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। कौन सा आपको ऐसा लगता था बहुत चेंजेस आए जहां से आपकी लाइफ में?
1: आलोक जी, सबसे बड़ा चेंज तो इस पुलिस में सर्विस में आने का ही रहा, क्योंकि कहीं दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं था कि मैं इस पुलिस की नौकरी में आऊंगा। जब मैंने एमबीए किया था, तब हमने हमारे पारिवारिक अंकल की एक फैक्ट्री थी, तो उस फैक्ट्री को हमने एमबीए करने के बाद में करियर बनाने का किया। फिर अचानक हमारे एक मित्र का मेरे पास में एक पत्र आता है, उस पत्र को मेरे चाचा जी ने पढ़ा, क्योंकि मैं अहमदाबाद उस वक्त शिफ्ट हो चुका था एमबीए करने के बाद में। उसमें उसने लिखा था कि दो नावों की सवारी करना उचित नहीं होता। और जब चाचा जी ने चीज पढ़ा तो उन्होंने मुझे बोला कि जाके एग्जाम दे लीजिए, साल दो साल के लिए कोशिश कर लीजिए, हो जाता है ठीक है, नहीं तो वापस इसमें आइए। तो वह एग्जाम मैंने, एक मित्र की चिट्ठी ने मेरा पूरा करियर वहां से चेंज कर दिया, और मैं एग्जाम दी और पहले अटेम्प्ट में मेरा एस डीवाईएसपी सिलेक्शन हुआ
0: दैट्स वंडरफुल।
1: है।
0: देखिए, कोई ना कोई ट्रिगर होता है, एक चिट्ठी ट्रिगर बन गई आपके लिए।
1: जी
0: और नहीं तो आप अपने बिजनेस में ही लग जाते, फैक्ट्री संभालते। वाह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एज ए प्रोफेशन मेरे को एमबीए के बाद में एक नेचुरल रिकॉर्ड्स वही था कि इंडस्ट्री लाइन में जाएं, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था, तो इंडस्ट्री लाइन में जाने वाले थे। एकदम से ट्विस्ट आ गया करियर में पूरा टोटली।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। चित्तौड़गढ़ में भी आपका काफी लंबा टेन्योर रहा है, उस दौरान नेतृत्व का आपका मूल सिद्धांत क्या था? आपने

0: एसपी डूंगरपुर हुई थी और एसपी डूंगरपुर से मेरी पोस्टिंग चित्तौड़ एसपी के तौर पर रही, जो बहुत लंबी पोस्टिंग है एसपी, 4 साल 8 महीने करीब, जो अपने आप में काफी लंबा समय हो जाता है, वो मेरी पोस्टिंग रही। अब चूंकि चित्तौड़ कानून व्यवस्था की दृष्टि से और दृष्टि से भी काफी सेंसिटिव रहता है, तो जैसा आपने कहा कि हमेशा ही कुछ न कुछ चीज चैलेंजिंग होता रहा लाइफ में वहां पे, और उस चीज को हमने जैसे भी है डील किया और समय वहां निकला। उसके बाद में SDIG जयपुर में मैं 2.5 साल रहने का काम रहा, उसके बाद में IG भरतपुर और IG कोटा के तौर पे मेरा करियर चलता रहा। लास्ट में IG क्राइम के तौर से मैं लास्ट में जयपुर से रिटायर हुआ था।
1: अच्छा, कोटा भी लिया।
0: जी जी, इस पूरे लंबे करियर में सभी जगह का एक अपना महत्व रहा है और अलग अलग अनुभव रहे हैं।
1: नहीं, चित्तौड़ में जैसे आपने बताया 4 साल एज एसपी, तो आपकी पुलिस के हिसाब से काफी लंबे समय है, मतलब आपने बहुत
0: 4 साल 8 महीने सर, और 4 साल लगातार पोस्टिंग रही। तो ये अपने आप में एक थोड़ा सा
1: रिकॉर्ड सही है। बिल्कुल सही बात।
0: जी जी।
1: अच्छा, ये छोटी सादरी एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत बात होती है जब भी कोई पुलिस वाले पुराने मिलते हैं, तो ये इंटरफेस प्रोग्राम पुलिस जनसंबंधों में ये कौन सी पहल आपने इनिशिएटिव लिया था, कुछ इसके बारे में बताएंगे शॉर्ट में हमें?
0: मेरी पहली पोस्टिंग से मेरे मस्तिष्क में ख्याल था कि हमें जनता के साथ जुड़ाओ, जो आज हम पुलिस अधिकारियों में काफी अच्छा देखते हैं, लेकिन उस वक्त समय के साथ, क्योंकि ये 92-93-94 के आसपास की बातें हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा ये चीज पहली बार करने का मौका मिला जनता को अपने साथ जोड़ने का। और इस एक्सपेरिमेंट को हमने छोटी साड़ी जब मेरी पोस्टिंग थी तब शुरू किया था, और पूरे सर्कल के सारे जितने भी गांव है, पंचायत है, उस सब जगह हमारा जाना हमने सुनिश्चित किया था लोगों के बीच में, और जनता के साथ जो संवाद डायरेक्ट हमने स्थापित किया था उसमें हमारे तत्कालीन SP साहब का भी काफी रोल रहा था। और उसके बाद में इंटरफेस प्रोग्राम जब मैं राजसमंद एडिशनल SP था, तो हमने विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा मानना है कि जब एज बड़ी हो जाती है, आदमी जब वयस्क हो जाता है, तो उसको पुलिस के बारे में जो बचपन से ही जो बात आ जाती है वही उसके दिमाग में चलती रहती है। हमारा सोच ये था इस विषय में कि अगर कम एज के बच्चों को ही शुरू से अगर हम पुलिस के बारे में जो गलत फहमियां हैं उनको दूर करें और पुलिस की वर्किंग एक्चुअली किस तरीके की होती है उसकी रियल लाइफ जानकारी देंगे, तो भविष्य में आगे जाके जब वो एज ए नागरिक बड़े होंगे तो उनके मन में पुलिस के बारे में कोई गलत फहमी नहीं होगी, और जो पुलिस जैसी है उसको एक्चुअल पुलिस किस तरीके की काम करती है, अच्छी या बुरी, उसको खुद को जानने का मौका मिले। और ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि काफी लोग बच्चे, क्योंकि हम लोग उस दौरान में सैकड़ों स्कूल में गए, कॉलेज में गए, विद्यार्थियों से बात की, और उसके बाद में उनकी पुलिस से संबंधित रवैये में कुछ परिवर्तन डेफिनेटली आए।
1: अच्छा, तो मतलब ये बच्चों को जोड़ना, ये तो बहुत ही एक तरह से इनोवेटिव सी बात है। कि आपके स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जाते थे, वहाँ कुछ उनसे इंटरेक्शन करते थे बच्चों से, स्टूडेंट?
0: जी जी बिल्कुल, सैकड़ों की संख्या में हम पहले इन्फॉर्म करते थे स्कूल में, फिर नेक्स्ट डे हमारे अधिकारी और हम स्वयं जाते थे, बच्चों से 1.5 घंटा पूरा बात करके उसके बाद में उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन के तौर पे वो पूरा इंटरफेस चलाया गया था। इसी तरीके से छोटी साड़ी प्रयोग में हमने ग्रामीण जनता, शहर की जनता, उनको डायरेक्ट जोड़ते हुए, और हमारे पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को, उनके साथ रेगुलर टच बनाए रखने के लिए ये प्रयोग चालू किया था। दोनों ही प्रयोग अपनी जगह काफी अच्छे रहे, सक्सेस रहे, और पब्लिक में पुलिस के प्रति एक पॉजिटिव भावना का उदय हुआ।
1: चलिए, बहुत इनफैक्ट अब तो आजकल तो ये काफी इंट्रैक्शन होने लगे, लेकिन आप जब 92-93 की बात करें, उस टाइम में थोड़ी सी पुलिस फोर्स एलूफ सी रहती थी, तो आपने एक तरह से उनको कनेक्ट करने की कोशिश की, बहुत खूबसूरत है, मजा आ गया सुनकर। तो अब सर, आप ये बताइए, जैसे कुछ नार्कोटिक्स और ब्लाइंड मर्डर वगैरह भी आपने सॉल्व किए हैं, तो ये जब मसले चलते होंगे तो काफी स्ट्रेस भी रहता होगा, क्योंकि पूरी फोर्स मोबिलाइज करनी पड़ती है और आपको इन्फॉर्मर्स भी खबर देते होंगे, तो इस टाइम अपना किस तरह से आप एलर्ट बना के रखते हैं, किस तरह से डायरेक्शंस देते हैं, कुछ इसके बारे में अंदर की कोई बात बताइए, कैसे करते हैं जब इस तरह का टफ सिचुएशंस होती हैं?
0: जी, मैं इसमें एक लाइन बताना चाहूंगा कि जब मेरी राजसमंद और चित्तौड़ पोस्टिंग थी, क्योंकि उस दौरान हमने

0: करीब 800 किलो से ऊपर अफीम का सीजर इन दोनों जगह की प्रोस्टिक्स में किया है, जो अपने आप में काफी एक कीर्तिमान सा लगता है। और जब वो अपने ब्लाइंड मर्डर्स की बात की, क्योंकि पुलिस और क्राइम का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पुलिस है ही इसीलिए कि क्राइम हो, क्राइम जब होता है तो उसको वापस डिटेक्ट करने का, खोलने का पुलिस का काम रहता है। तो ये तो पूरे कैरियर में क्राइम को कंट्रोल करना, और अगर कोई क्राइम हो गया है तो उसको ब्लाइंड मर्डर हो, लूट हो, डकैती हो, उसको खोलने का तो बहुत सारा अनुभव रहा है। और जहां तक आपने कहा कि स्ट्रेस, डेफिनेटली स्ट्रेस, क्योंकि पुलिस का काम इसी तरीके का है कि 24 घंटे कुछ ना कुछ लगातार चलता रहता है, और विशेष तौर पर स्ट्रेस आता था लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स के दौरान, जब कभी कोई हिंदू मुस्लिम या और कोई लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम्स होती थी तो उसमें स्ट्रेस आता था। लेकिन अब इस स्ट्रेस को अगर हम घर पे लाएंगे तो स्ट्रेस और बढ़ता था। हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे सहयोगियों के साथ में मिलकर उस स्ट्रेस को तत्काल डील करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको तत्काल डील करें, कैसे इसको खोलें, जनता के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें, और पुलिस कर्मियों में एज ए टीम वर्क, टीम स्पिरिट की तरह काम करें। और घर पे आने के बाद, जो आपका मूल प्रश्न है कि स्ट्रेस से कैसे डील करते थे, घर पे आने के बाद में पुलिस संबंधी कोई घर पे चर्चा नहीं। और जिस पे आपने मेरे परिचय में जो बात कही थी कि संगीत, स्पोर्ट्स, इनके माध्यम ये हमें डी स्ट्रेस करने का एक बहुत अच्छा माध्यम।
1: मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो इसी संगीत का जो ने जिस तरह से जीवन में आपको डिस्ट्रेस किया है, इसी को लेके यहाँ हम एक गाना सुन लेते हैं अच्छा सा, और फिर आगे बातचीत जारी रखते हैं।

0: हाँ, तो वेलकम बैक हमेशा जी। अब आते हैं, आप हम दूसरी तरफ रुख करते हैं। एक सख्त पुलिस अधिकारी के भीतर संगीत का यह कोमल, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? क्या आपको बचपन से गाना गाना पसंद था या संगीत पसंद था, कुछ बताइए। ये बहुत ही दिलचस्प होगा।
1: ये वास्तव में बहुत दिलचस्प आपका प्रश्न है। मैं पूरे लाइफ में कभी कोई गाना नहीं गा पाया। ये एक चीज आपको बताते हुए थोड़ा आपको भी सुनते हुए अजीब लगा होगा, लेकिन ये सत्य है कि मैं कभी गाना नहीं गाता। लेकिन उसके बावजूद बचपन से जो संगीत का शौक लगा, वो शौक लगा हमारे घर पे दादाजी के जमाने का एक रेडियो हुआ करता था। और
0: जी
1: फादर ने, मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था, तो एक मुझे टेप रिकॉर्डर ला के दिया था।
0: ओके
1: और स्कूल से जब मैं 5वीं के बाद में, जब चौथी 5वीं में जब पढ़ता था, घर जब आता था, तो उस रेडियो पे, जो मर्फी का एक छोटा रेडियो हुआ करता था उस
0: बिल्कुल
1: जमाने में,
0: बिल्कुल बर्फी का होता
1: तो
0: था।
1: उस पे 12:30 बजे बाद जो संगीत ऑल इंडिया रेडियो पे जो गाने आते थे, वो मैं सुनता था। और धीरे धीरे ऐसी आदत बचपन से ही होती चली गई कि मुझे बताते हुए भी अच्छा लगता है कि कभी बुधवार शाम को अमीन सयानी का मीना का गीतमाला
0: आए
1: सुन रहे हैं,
0: हाय हाय
1: कभी 7:05 सुबह जो पुराने गाने ऑल इंडिया रेडियो पे आते थे, और द सर्विस पे 7:30 से 8 के बीच में वो सुनते थे, रेडियो सलोन सुनते थे मॉर्निंग में, और दिन में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस पे जो 3:30 बजे बाद वाले जो गाने आते थे, वो सुनना। और धीरे धीरे आदत ऐसी पड़ गई कि रात को 12:30 से 1 बजे एक पुराने गानों का एक प्रोग्राम रेडियो पर आया करता था, उसको सुनते हुए विविध भारती के कार्यक्रमों का तो खैर क्या नहीं किया था। आपने पुरानी दिनों की
0: संगीत सरिता हवा
1: याद
0: महल सब बिल्कुल। अब ये तो आपने दिल की बात छेड़ दी। हम तो वैसे भी रेडियो के दीवाने हैं, और अभी 13 को सर वर्ल्ड रेडियो डे था, उस दिन भी
1: जी
0: बहुत कार्यक्रम आए थे, बहुत बहुत। और ये तो आपने जो जो बताया बिल्कुल मजा आ गया। और रेडियो सिलोन, अमीन सयानी, अब मैं कुछ, मेरे पास अमीन सयानी जी के बारे में, मैं भी उनका बहुत शैदाई हूँ, तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं कभी। चलिए तो ये
1: स्पेशल तौर पे जब 7:55 हुआ करता था रेडियो सिलोन का लास्ट गाना, जब केएल सहगल साहब का बजना शुरू
0: सहगल साहब का
1: करता
0: आता था, और पहला गाना वो चुप है जमाना आज पहली तारीख है, किशोर
1: बिल्कुल
0: कुमार
1: सर,
0: वाला जो
1: वो
0: गाना,
1: दिन
0: जो
1: अलग
0: फर्स्ट
1: थे,
0: तारीख, फर्स्ट
1: बिल्कुल
0: तारीख होती थी जब हमेशा वो गाना आता था। बिल्कुल सही बात है,
1: जी
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पुराने गाने, और अमीन सयानी और शिव कुमार सरोज, गोपाल, ये स्टारवर्स थे सर एनाउंसर उस जमाने के।
1: अमीन सैनी साहब का पूरा जो बिना का गीतमाला का जो रहा है, जो उनका सफर बाद में उन्होंने अलग से पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भी
0: हाँ
1: कराया था, वो मेरे पास है।
0: हाँ बिल्कुल
1: और कभी
0: बिल्कुल
1: कभी मैं अभी भी सुनता हूँ उनकी आवाज, और मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है, कल परसों में अमीन सैनी के बारे में वापस पढ़ रहा था कहीं
0: अरे वाह। मैं अभी उनकी एक बहुत बड़ी आ रही है, मेरे को आज ही मिली है, मैं आपके पास भी एक उसका टीजर आया है और एक पूरा प्रोग्राम आ रहा है अभी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो बात अपनी और दूसरी शुरू हो गई। चलिए, क्योंकि हम लोग तो दीवाने हैं सर। तो एक तरह से संगीत आपके लिए तनाव मुक्ति का तो माध्यम रहा ही है, और आपने जैसे बताया विविध भारती तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन विविध भारती भी हम लोग ये रात को जो मनचाहे गीत तो आया करते थे, छाया गीत प्रोग्राम आया करता था, बहुत ही बढ़िया
1: जी।
0: था। चलिए
1: और इसी के साथ में मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में मेरा शौक रहा है, तो
0: जी
1: 1971-72 ऑनवर्ड, जब मैं 7-8 साल का था, तब से ही क्रिकेट टेस्ट मैचेस की कमेंट्री सुनना, टेनिस मैचेस की कमेंट्री सुनना, हॉकी मैच वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस 72 का, जो एमस्टरडम अपन हॉलैंड से फाइनल में 3-2 से हारे थे, उसकी
0: हाँ
1: कमेंट्री मैंने लाइव 7-8 साल की उम्र में सुनी थी।
0: हाय हाय, तो
1: वो शौक
0: जसदेव
1: जो
0: सिंह जी के
1: आपने, जब बिल्कुल जसदेव
0: लिए।
1: सिंह जी, मुरली मनोहर मंजू, सुशील दोषी, सब बाद में सुनते रहे इनको,
0: हाँ, जसदेव सिंह जी,
1: तो
0: जसदेव सिंह जी,
1: ये सारा शौक इसीलिए, सारा स्पोर्ट्स का, म्यूजिक का, ये सभी, इसका शौक शुरू करने वाला मेरे लिए रेडियो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। जसदेव सिंह साहब की अभी 2009 में मेरी उनकी डेथ से पहले मुलाकात
1: जी
0: हुई थी, बहुत
1: जी जी
0: बढ़िया।
1: जी
0: चलिए सर, तो मजा आ गया सारी बातचीत करके, इनफैक्ट डिस्ट्रेस हो गए हम भी। मुझे भी आपने डिस्ट्रेस कर दिया। तो अब आते हैं खमसा साहब 2013 की उस शाम के बारे में कुछ बातचीत करते हैं जब सजन द स्पार का विचार जन्मा। उस क्षण को आप कैसे याद करें, कैसे उन लम्हों को याद करते हैं, क्या हुआ था उस दिन, कुछ ये तो बताइए, उस शाम को क्या खास बात हुई थी?
1: एक्चुअली उस दौरान मेरी पोस्टिंग उदयपुर में थी और मेरे मन में काफी दिनों से ख्याल था कि कुछ न कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जहां नए आने वाली टैलेंट को एक शोकेस करने का मौका मिले, साथ में जो एस्टेब्लिश्ड अच्छे बड़े सिंगर्स हैं उनको भी रूबरू कराने का जनता के साथ ऐसा कोई अवसर मिले। जब ही हमने शुरू किया तो मेरे 5-7 दोस्तों को घर पे बुलाया था, उनके साथ में सारी चर्चा शुरू की गई और चर्चा शुरू करते ही सबने इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। और देखते ही देखते पहले प्रोग्राम जब हमने शुरू किया तो हमारे साथ में 38-40 जने, फर्स्ट प्रोग्राम जब हमने किया था तो वो हमारे एक मित्र के गार्डन में किया था, 45 जने जोड़े। तो उसके बाद से फिर लगातार ये अपने आप में क्योंकि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट चलता चला गया, देखते ही देखते पूरे शुरुआत उदयपुर से हुई, फिर राजस्थान में 6 चैप्टर हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, झुंझुनू, भीलवाड़ा, इसी तरीके से इंडिया में 6 बड़े शहरों में और अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली वगैरह चैप्टर्स इसके लॉन्च हुए। और देखते देखते मुझे खुद को पता नहीं ये कैसे अपने आप में बढ़ता चला गया सब मित्रों के सहयोग से।
0: नहीं, बहुत खूबसूरत। तो आपको क्या अंदाजा लगा था उस टाइम के एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन जाएगा आपकी एक छोटी सी जो गार्डन में आपने एक शुरुआत की थी, महफिल टाइप लगाई होगी उस टाइम, तो आपने अभी इतना बड़ा इंटरनेशनल फोरम बन जाएगा, कुछ अंदाजा था उस टाइम?
1: टू बी फ्रैंक एनफ उस वक्त ऐसा कोई अंदाजा नहीं था, शुरुआत में इतना ही था कि ये उदयपुर में है और हमारे मित्रों के साथ सहयोग से कुछ सुनेंगे करेंगे। लेकिन हमारे एक अजीज मित्र जो उन दिनों हिंदुस्तान जिंक में कर रहे थे एज ए सीईओ, तो उन्होंने इसको और सपोर्ट देने के लिए फैसला किया और सपोर्ट से फिर जब एक दो बार बड़े कार्यक्रम हुए तो लोगों का जुड़ाव भी इसके साथ बढ़ता चला गया और फिर देखते ही देखते सभी जगह हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके सहयोग से आज एक संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम अपने आप में ये ऑर्गेनाइजेशन कर चुका है।
0: नहीं सर, इसके लिए आपको सलाम है, क्योंकि देखिए क्या है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि किसी भी चीज को शुरुआत करना तो फिर भी शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन करना, बनाए रखना उसको और आगे बढ़ाता रहना, ये बहुत मुश्किल होता है और जिस तरह का हमारा माहौल है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वो जो सस्टेन आपने किया है इसको और बढ़ाया है तो ये बहुत बहुत ही अद्भुत है, मैं तो यही कहूंगा।
1: तो सर इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमारे मित्रों का और उन साथियों का जो इसके साथ जुड़ते चले गए, और इसके पीछे एक प्रिंसिपल इसमें हमेशा काम किया डिसेंट्रलाइजेशन का।
0: जी जी,
1: हमने जहां जहां भी ये चैप्टर्स बने वहां सेपरेट ट्रस्ट आज जो सब जगह बहुत अपने आप में अच्छा कार्य कर रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि सब जगह सेपरेट ट्रस्ट बने जो उनके ऑफिस बीरर्स होते हैं वो उस ट्रस्ट के और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो अपने अपने पूर्णतया सक्षम है, अपने सारे फैसले वही लेते हैं, वही अपना सारा डिसीजन लेते हैं, और क्योंकि बड़ा डेमोक्रेटिक वे में ऑर्गेनाइजेशन वो लोग भी अपने लेवल पे काफी उस तरीके से चलाते हैं, तो इसमें लोगों को जुड़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और सारे अच्छे लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। और चूंकि भावना सही है, किसी का इसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है, तो जो अच्छे लोग जब एक साथ चलते हैं तो फिर और काफी लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं और यही इसकी ताकत है।
0: हाँ, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है, बजा फरमाया आपने, क्योंकि डिसेंट्रलाइज करना भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपने सही लोगों को जोड़ा और सही लोग इसलिए जुड़े कि आप सही थे, तो ये दोनों बातें एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। आपने अच्छे लोगों को जोड़ा और वो भी इसलिए जुड़े कि आप जो शुरू का सेंट्रल फिगर है वो सही होता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इसी सही और खूबसूरत बात पे कि एक छोटी सी चीज की शुरुआत होती है और आगे बढ़ जाती है, हम एक कोई अच्छा सा गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस सफर की शुरुआत करते हैं।

0: हाँ हमेशा साहब, आज 12 भारत में आपके चैप्टर्स हैं, यूएसए, यूके, कनाडा में विस्तार है, तो वही जैसा आपने अभी थोड़ा सा जिक्र कर ही दिया था कि प्रबंधन का मॉडल क्या है, कुछ और बताना चाहेंगे इसके बारे में?
1: इसका विशेष रूप से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फैला हुआ है, ये कोविड पीरियड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स जब शुरू किए तो बताते हुए अच्छा लगता है कि कोविड में ऑनलाइन प्रोग्राम्स, क्योंकि बाद में तो काफी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हुए, लेकिन शुरुआती ऑर्गेनाइजेशन सजंदा स्पार्क हुआ करता था उस वक्त। उदयपुर और जयपुर हमारे दो चैप्टर वर्क कर रहे थे, जोधपुर भी था। उसके बाद में जब ऑनलाइन शुरू हुए, पूरे वर्ल्ड से हमारे साथ में श्रोता जुड़ने शुरू हुए उस प्रोग्राम्स में, तो धीरे धीरे आपस के संपर्क से, दोस्तों के संपर्क से अलग अलग जगह चैप्टर्स लॉन्च हुए। और बताते हुए अच्छा लगता है कि 400 से ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम उस वक्त कोविड पीरियड में किए गए थे। कुल मिला के आज तक 400 से ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन प्रोग्राम, लेकिन 200-250 से ऊपर, 250-300 से ऊपर प्रोग्राम ऑफलाइन, यानी स्टेज प्रोग्राम अलग अलग शहरों में जहाँ हमारे सृजन चैप्टर्स हैं वहाँ किए गए हैं। और इसके माध्यम से संगीत की सेवा करने का, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काफी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक, जैसा अपन ने बात की है, डिस्ट्रेस करने का एक बहुत बढ़िया मौका, और समाज के साथ जुड़ने के लिए उनको एक मौका मिला है।
0: ये तो आपने बता दिया, मेरे जहन में अभी दो सवाल आए हैं, टॉप द कफ है। एक तो मुझे ये बताइए कि सृजन द स्पार्क, जो आपने नाम दिया है इस मूवमेंट को या सांस्कृतिक आंदोलन को, ये नाम कैसे आया, पहला तो ये, और क्या आपके लिए कुछ लोग टेक्निकली भी आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एमपी फेसबुक के प्रोग्राम्स, ये जो लाइव करना ऑनलाइन, ये भी काफी टेक्निकल सा काम है, तो कुछ इन दोनों चीजों के बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। वास्तव में जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम रख रहे थे जी, तो शुरू में सृजन, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी रही, सृजन कैसे नाम आया और द स्पार्क कैसे जुड़ा।
0: हाँ बिल्कुल,
1: 1998 में मुझे आज भी याद है, 1998 में तलत महमूद साहब की डेथ हुई थी।
0: आए हाय हाय हाय,
1: तो उनकी याद में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखना चाहा था, और राजसमंद झील के अंदर हमने वो प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे कुछ मित्रों के साथ आयोजित करवाया था जी। तब इसका नाम हमने सृजन 98 दिया था, तो वही नाम हमेशा से जहन में रहा, और जहां जहां भी हम रहे, कभी सृजन द स्पार्क की तब फॉर्मली कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था, लेकिन जहां कोई भी संगीत का कार्यक्रम होते थे तो हम सृजन का नाम उसमें लिखते थे। ये मेरे दिमाग में शुरू से रहा। अब जब 2013 में जब हम लोगों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया, तो शुरू में सृजन की बात आई, हमने कही केवल इस नाम से तो और भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे और कार्यक्रम होते ही रहे हैं सृजन, क्योंकि अपने आप में काफी, हमने कहा इसमें कुछ ना कुछ ऐसा एडजेक्टिव जोड़ा जाए, तो क्योंकि हम नए आर्टिस्ट को बढ़ावा देने का इसके पीछे मेन मकसद था, जो उनको मंच देने के लिए एक ऐसी स्पार्क ढूंढने का हमारे मन में ख्याल, इसलिए द स्पार्क इसमें जोड़ा गया, सृजन द स्पार्क, और इसी नाम से फिर इसको रजिस्टर करवाया गया।
0: नहीं नहीं, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया, स्पार्क मतलब नई टैलेंट्स के हिसाब से के जिसमें स्पार्क हो, और सृजन तो क्रिएटिविटी है ही, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और तलत महमूद साहब की याद करके आपने बहुत मजा कर दिया कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो
1: मुझे विशेष तौर पे रविवार के दिन शाम को 4 बजे बाद बैठ के तलत महमूद को जो सुनने का रेडियो को मजा आता था, टेप रिकॉर्ड पे वो अलग ही था।
0: बस सर, मैं तो उस जमाने में जब वो रिकॉर्ड पेयर हुआ करते थे, तो इनके एलपी आया करते थे तलत महमूद साहब के, मधुशाला के, और वो सारे, वो मुझे आज भी याद है कि वो दिन क्या क्या दिन हुआ करते थे।
1: सर इसी बात पे मुझे मैं पहले बताना भूल गया, हमारे घर पे उस वक्त का जिसको चूड़ी वाला बाजा कहते थे, पुराने जमाने का रिकॉर्ड प्लेयर हाथ से चलाने वाला, वो हुआ करता था, और मेरे पास 1930s की रिकॉर्ड्स, उस वक्त की जो एक साइड में एक ही सॉन्ग उसमें होता है, तो वो रिकॉर्ड्स भी, और आज भी उस पर कभी कभी सुनते हैं तो कुछ अलग ही अनुभूति होती है।
0: आए, आए, आए। 78 RPM के जो रिकॉर्ड हुआ
1: जी,
0: करते
1: जी,
0: थे बिल्कुल बिल्कुल फिर बाद में EP आए फिर LP आए, लेकिन 78 RPM में वो चाबी लगा के, और फिर कभी जब
1: बिल्कुल,
0: उसकी
1: बिल्कुल।
0: चाबी खत्म हो जाती थी तो बड़ा वैसा गाना बजता था,
1: पिन मिलना बड़ा मुश्किल,
0: पिन मिलना उसको उल्टा करके टेढ़ा करके उसमें पिन लगाया करते थे। अरे साहब क्या क्या किस, बड़ा नॉस्टैल्जिक है ये सारी बातें करना, तो वो चीजें ही नहीं रही। क्या रिकॉर्ड प्लेयर ही खत्म हो गए, फिएस्टा का एक HMV का आता था वो मेरे पास,
1: बिल्कुल खत्म। इवन अब तो CD भी खत्म हो गई, कैसेट्स खत्म हो गए, CD खत्म हो गए, दौर ही अलग आ गया।
0: अब ये जो आप ग्लोबल म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहे हैं, ये क्या विजन है, कुछ बताएंगे इसके बारे में?
1: ये हमारे उदयपुर ऑर्गेनाइजेशन के जो साथी हैं उन सब लोगों का ख्याल था कि अपन जब संगीत के लिए काम करना चाहते हैं तो एक अपनी खुद की एकेडमी हो। तो इसके लिए उन्होंने अपनी सेविंग से, क्योंकि सजन का कोई भी कार्यक्रम कभी भी कोई टिकटेड या डोनेशन कार्ड पे नहीं होता, सब मेंबर्स अपने खुद का कंट्रीब्यूट करके या कोई स्पॉन्सर कोई हो जाता है तो उसी के थ्रू करते हैं।
0: okay,
1: तो उसके थ्रू आपस में इकट्ठा करके अपने सेविंग्स के थ्रू एक एकेडमी बनाने का फैसला किया, और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक जमीन ली है, और बताते हुए लगता है कि हमने शायद 6 अप्रैल को इसी वर्ष 2025 में अकेडमी के कंस्ट्रक्शन का काम भी हमारी उदयपुर टीम ने शुरू किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 2 सालों में सभी साथियों के सहयोग से और कोई अच्छे अगर कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ेंगे तो इसको जल्दी इस बिल्डिंग को पूरा करने का काम किया जाएगा। इस जगह हम लोग चाहते हैं कि हमारी फोक आर्ट्स को, हमारी लोक कलाओं को, हमारे अच्छे संगीत को आगे बढ़ाने के लिए ये अकेडमी एक अच्छी तरीके से काम करे, बाहर के अच्छे एक्सपर्ट्स को बुला के बच्चों को ट्रेन करें, और जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनका परिचय भी उस एकेडमी के माध्यम से उभरते हुए आर्टिस्ट को कराए।
0: जी बहुत खूबसूरत साहब, और ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपका कोई प्रोग्राम में टिकटिंग नहीं होती है और सब लोग आप ही रिसोर्सेज मोबिलाईज करके और प्रोग्राम करते हैं, और फिर आपको आपने उसको मूर्त रूप भी दे दिया है जो आपका विजन है, इनफैक्ट वो जमीन पर उतर गया है होगा और 1-2 साल के अंदर वो पूरा मतलब फाइनल शेप में आ जाएगा। बहुत खूबसूरत है। तो इसी जो संगीत की आप सेवा कर रहे हैं इसी के नाम पे रुक के एक हम गाना सुन लेते हैं और फिर आगे चलते हैं।

0: याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हो, कोई एनेक्डोट हो, अगर आप हमें हमारे साथ कोई शेयर करना चाहें तो प्लीज स्वागत है।
1: यादें अनेक हैं। मैं एकदम लेटेस्ट अभी जब हमने डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, जिनको इसी वर्ष पद्म विभूषण भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था, कविता जी के प्रोग्राम में जब उनको इनवाइट किया था हमने, और हमें यकीन नहीं था कि हमारे इनविटेशन पे वो बेसिकली वो कविता जी के हस्बैंड भी हैं, तो नॉर्वे वगैरह गए हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप भी पधारिए और हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। तो ही वाज सो ग्रेसफुल, बहुत इजीली उन्होंने हाँ कर दिया। लेकिन चूंकि हम कोई भी आर्टिस्ट जो जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हम देते हैं, कभी हम उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि आप कहीं सोलो, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जो भी है बीच प्रोग्राम के दौरान कुछ अपना एक जस्ट ऑडियंस के
0: प्रस्तुति
1: लिए थोड़ा सा अपना प्रस्तुति।
0: प्रस्तुति दे।
1: बट
0: हाँ
1: डॉक्टर एल सुब्रमण्यम साहब जो इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, ही वाज सो सिंपल, और जितने आज तक हमारे आर्टिस्ट आए उन सब ने कुछ ऐसा किया। बट मैं इसमें ये था कि डॉक्टर एल सुब्रमण्यम कहीं करें ना करें, क्योंकि कविता जी का प्रोग्राम है उस बीच में, वो लेकिन वो स्टूल लगा के बाहर साइड में बैठ गए चेयर पे जब कविता जी का प्रोग्राम चल रहा था, और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं करूंगा। और हम ये सोच रहे थे 5 मिनट का वो परफॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने करीबन आधे घंटे का परफॉर्मेंस दिया और पब्लिक को बड़ा जबरदस्त उसका आनंद मिला। तो ऐसे उषा मंगेशकर जी ने जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, तो उसपे जैसा हमें बताया गया कि लता जी ने उस वक्त तुरंत ही अवार्ड ले थी, जैसे उषा जी ने अवार्ड ग्रहण किया था उन्होंने स्वयं ट्वीट किया था। और ये बात सत्य है कि उनको लता जी ने ही कहा था कि अब अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप जाइए। और वो पहले वो उषा जी थोड़ा हिचक रही थी, तो लता जी के कहने पे वो आई थी। कुछ यादें बड़ी अच्छी अच्छी यादें हैं। कल्याण जी आनंद जी भाई के, जब आनंद जी भाई आए थे, तो ही वॉज सच जैम पर्सन की रात को प्रोग्राम के बाद में 12 से लेकर 3 बजे तक हम होटल में जहाँ वो रुके थे, तो उनके साथ जो चर्चाएं हुई, वो चर्चा का अपने आप में एक अलग ही आनंद था।
0: वो तो शायद हंसी मजाक भी काफी करते हैं
1: बहुत
0: आनंद जी
1: ज्यादा।
0: के बारे
1: मैं
0: में।
1: वही,
0: हाँ मैंने सुना है।
1: जबकि उस वक्त होटल में खाना बंद हो चुका था, तो वापस से नया खाना बनवाया था, तो उसके लिए जो 2-3 घंटे टाइम लगा बीच में, आधा एक घंटा, तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया उस समय को, और हम लोगों को भी लगा कि अच्छा ही हुआ कि खाना नहीं बना।
0: सही बात है, सही बात है। तो अब मैं थोड़ा सा एक सवाल पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो सही है। जैसे आप लोग कलाकारों का सम्मान करते हैं, तो ये लोकप्रियता से जुड़ा है या योगदान से जुड़ा है, मतलब जो संगीत के प्रति योगदान है उससे जुड़ा है, किस तरह, क्या पैरामीटर डिसाइड करते हैं, किस तरह से करते हैं?
1: सर इसमें दोनों ही हैं, लोकप्रियता तो है ही, लेकिन इसके साथ में चूंकि हम लोग जो ये अवार्ड करते हैं, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे भी लोग का हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है जिनका कंट्रीब्यूशन भारतीय संगीत, भारतीय कला संस्कृति को बहुत ज्यादा, लेकिन आम तौर पे लोग उनको नहीं जानते आज। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि महान गीतकार योगेश जी, आज आप आम जनता से पूछेंगे तो वो नहीं जानेंगे, लेकिन योगेश जी को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किया। पियानो के बहुत बड़े प्लेयर ब्रायन सिलास को हमने किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, उनको बुला के उनको हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनसे सम्मानित हुआ। इसी तरीके से जैसे पर्दे के पीछे रहते हैं गीतकार हैं, समीर अंजान हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, हजारों गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन आम जनता नहीं जानती, वो गाने वाले के बारे में जानती है। वो ऐसे लोग को भी हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज तक करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के अलावा, हम लोग हमारे देश की जो 6 महान आर्ट एंड कल्चर की विभूतियां रही हैं, चाहे वो नंदलाल बोस साहब हो, ओंकारनाथ ठाकुर साहब हो, पी वी पलुस्कर साहब हो, इन सब के नाम से, अमीर खुसरो साहब के नाम से, हम लोग 6 अवार्ड और हर साल देते हैं। तो उसमें देश की करीबन 50 से ऊपर ऐसी विभूतियां जो पर्दे के पीछे है, वो सामने कहीं नहीं है, वो पत्रकार भी हो सकते हैं जो सिनेमा पे लिखते हैं या संगीत पे लिखते हैं,
0: पेंटर भी हो सकते हैं।
1: और कोई कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई टीवी एक्टर भी हो सकता है, ऐसे लोग हैं।

0: जो पर्दे के पीछे रह के जिन्होंने संगीत और आर्ट की, जैसे हमने अपने राजकुमार केशवानी जी के बारे में जो बात करना।
1: हाँ हाँ, अरे राजकुमार केशवानी जी की याद आ गई, मैं भी फैन हूँ, तो डेथ हो गई उनकी।
0: हाँ, उनकी डेथ हो गई, वो हमारे साथ बहुत गहरे जुड़े हुए थे। और
1: अच्छा,
0: ऐसे लोग को हमने सम्मानित करने का, पंकज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सम्मानित किया है जो पीछे से संगीत की और आर्ट कल्चर की बहुत सेवा करते हैं।
1: राजकुमार केशवानी के बारे में तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। फैन भास्कर के अंदर उनका एक कॉलम
0: रसरंग
1: बिल्कुल,
0: जब भी पंकज दुबे लिख रहे हैं अभी आजकल
1: बिल्कुल। तो राजकुमार केशवानी जब तक थे तो मैं काफी रेगुलरली पढ़ता था उस कॉलम को, शायद संडे वनडे को आता था मेरे ख्याल।
0: जी संडे को आता था। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी हर महीने उनसे लंबी टेलीफोन पे बात जब तक वो जीवित रहे हुआ करती थी हमेशा।
1: अरे वाह वाह वाह वाह,
0: हम बहुत संगीत पे चर्चा करते थे।
1: हाँ, पुराने किस्से सुनाते थे और उर्दू भी बहुत अच्छी थी उनकी, और मैं थोड़ा उर्दू का शैदा ही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था उनकी बात सुनते, पुराने पुराने किस्से लाते थे, अरे मजा आ गया था। अब खमेसरा साहब बकौल अमीन सयानी करीब करीब पायदान पर ही आ गए हैं, आपका जिस तरह का लीडरशिप स्टाइल है, आप पर्दे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा है ऐसा लोग कहते हैं, क्या नेतृत्व शैली का हिस्सा है, बताइए इसके बारे में।
0: जैसा मैंने पहले भी अपनी बातचीत में आपको बताया था कि थोड़ा मेरा डेमोक्रेटिक रूप से अपना रुझान रहता है हर मामले में। पुलिस की नौकरी में भी शुरू से लेकर आखिर तक मैंने अपने नीचे मातहत जो भी कर्मचारी रहे उनको कभी मातहत नहीं माना, मैंने साथ का कार्य करने वाला उनको माना है, एक ही एम की उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उनको अपने टीम का सदस्य माना है। तो सब जब मिलके काम करते हैं, आपसी राय से करते हैं, हो सकता है कि फाइनल डिसीजन हमेशा हमने लिया हो। जैसे मान लीजिए मैं सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ या आईजी हूँ उस जिले का या उस रेंज का, अगर मेरे पास पूरी जिम्मेवारी है तो डेफिनेटली सारा फाइनल कॉल मेरा रहेगा, फाइनल डिसीजन मेरा रहेगा। लेकिन अगर हम पांच व्यक्तियों से बात करके और उस डिसीजन की तरफ आगे अग्रसर होते हैं तो वो हमेशा बेहतर होता है। ये कार्य प्रणाली शुरू से रही और मुझे इसमें कहते हुए संकोच नहीं है कि मेरे सभी साथियों का, मुझे पुलिस में चाहे वो कांस्टेबल हो या चाहे अधिकारी हो, सबका बहुत सहयोग मिला। और उसी सहयोग से और टीम स्पिरिट से काम करने की वजह से पुलिस की जो लंबी 35 साल की यात्रा रही वो संपन्न हुई थी। और वही कार्यप्रणाली चाहे कहीं भी रहे, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो चाहे खेल के क्षेत्र में, वही कार्यप्रणाली हमेशा मेंटेन रखेगी।
1: बहुत खूबसूरत साहब, क्या क्या बढ़िया बात बताई है आपने। और पुलिस सेवा और सांस्कृतिक सेवा, ये दोनों ही सेवाएं आप कर रहे हैं, दोनों के एक ही रूप है, एक ही ध्येय, और आपने करीब करीब बता ही दिया कि किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, मैं खमिश्रा साहब, अब चूंकि हम इतनी आराम से बातें कर रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा था, आई डोंट नो, मुझे ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, कि आप गाना नहीं गाते, ठीक है, लेकिन माशाल्लाह आपकी जो आवाज आ रही है ऑनलाइन मेरे को, बहुत बहुत खूबसूरत है और बहुत बढ़िया आवाज आ रही है, तो अगर कुछ गुनगुना ना चाहें तो गुनगुना दीजिए, कोई पंक्तियां सुनाना चाहें तो पंक्तियां सुना दीजिए, कोई शेर व शायरी सुनाना चाहें तो वो सुना दीजिए, कुछ कर सकते हैं हमारे लिए।
0: हमारे अजीज और जो हमारे सदन के पैटर्न भी हैं उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब
1: जी,
0: उनकी गजल की लाइन है जो मैं ऐसे ही आपको बोल के सुना सकता हूँ कि जर्रों से राह गुजर कर चमक अपनी छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। और जहाँ गुनगुनाने की आप बात कहेंगे तो मुझे बचपन से केवल एक गाना, मैं कभी कभी एक आध लाइन उसकी गुनगुना देता हूँ कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, ये हमारा बड़ा फेवरेट गाना रहा है। और बड़ी इसमें कल्याण जी आनंद जी साहब की दम रही है, और आनंद जी साहब से जो इस वजह पर जब चर्चा हुई तो अलग ही बात।
1: शायद सफर फिल्म का गाना है जहाँ तक मुझे याद
0: जी
1: है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, किशोर साहब को फिल्मफेयर अवार्ड मिला, किशोर कुमार जी को इसमें,
1: राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और फिरोज खान की पिक्चर थी, बड़ी प्यारी पिक्चर थी, और जीवन से हरी ते मजबूर करें जीने के लिए, एक ये दो गाने बहुत ही मकबूल थे इस पिक्चर के।
0: ये मैं जब 7-8 साल का था तब, 8-9 साल का, तब मैंने गाना पहली बार सुना था, और तब से एक फेवरेट गाना ये और एक मन्ना डे साहब का जिंदगी कैसी है पहेलिया है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं,
1: बहुत ही बहुत ही बढ़िया आनंद का।
0: उसके गीतकार साहब योगेश जी को जब हमने बुलाया तो इसी बैठ के जो उन्होंने सारी चीजें बताई वो जिंदगी के अमूल्य यादों में से है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ गया साहब आपके साथ, सारा कुछ जितनी बातें हुई इतनी नॉस्टैल्जिक हैं कि मैं क्या कहूं, कि इंटरव्यू तो बहुत होते हैं लेकिन आपके साथ बात करके मजा आ गया। तो अब लास्ट में कुछ युवा पीढ़ी को आप कोई मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें, खासकर शास्त्रीय संगीत गजल और कला के संदर्भ में, तो आपका स्वागत है।
0: युवा पीढ़ी को मेरा एक संदेश हमेशा रहेगा कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप चाहे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बाद में आप किसी नौकरी में आएंगे या बिजनेस करेंगे, वो आपका एक प्रोफेशनल लाइफ का अलग हिस्सा है, लेकिन साथ में आपको अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए या रखने के लिए, उसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिफरेंट फील्ड्स में अपनी रुचि को बनाए रखेंगे, आप इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में आप अच्छा करें, बहुत अच्छा करना चाहिए, आप बिजनेसमैन है, करिए, लेकिन साथ के साथ अपने चारों तरफ जीवन में जो अलग विधाएं हैं, चाहे वो आप संगीत का हो, चाहे कोई पेंटिंग का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे किसी अन्य स्पोर्ट्स का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, किसी का भी हो, आप अपनी रुचि अन्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं, ये नहीं कहता कि आप 5 तरीके की रुचि पैदा करें, लेकिन 1, 2, 3 जो भी आप कर सकते हैं आप मेंटेन रखें, उसकी वजह से क्या होगा कि आपके संपर्क बहुत अच्छे बनेंगे, आप जिस प्रोफेशन में उस प्रोफेशन का कर्म भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। मैं अपना खुद का एग्जांपल बताता हूं कि जिस फील्ड में मैं रहा पुलिस में, क्योंकि अगर मैं इन डिफरेंट चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों से नहीं जुड़ पाता तो जिंदगी में पुलिस और वही एक सर्कल रह जाता। समाज के जो आगे रहने वाला तबका जो रहता है हर फील्ड का अलग अलग, वो आपके संपर्क में रहता है, तो कानून व्यवस्था में भी आपको बहुत मदद करता था, तो आपके प्रोफेशन में भी ये मदद करेगा, और आप एक डिफरेंट, आप चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, आप एक डिफरेंट किस्म के डॉक्टर, डिफरेंट किस्म के इंजीनियर, डिफरेंट किस्म के प्रोफेसर कहलाएंगे, वो आपकी छवि को एक अलग निखार देगा, तो ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही वजनदार बात है और बहुत ही अहम बात है। तो दोस्तों, आज की बातचीत ने साबित कर दिया कि जीवन केवल एक पेशे का नाम नहीं होता, वह एक दृष्टि का नाम होता है। एक और वर्दी में अनुशासन, दूसरी ओर सुरों में संवेदना, एक और अपराध नियंत्रण की कठोरता, दूसरी ओर कला संरक्षण की कोमलता। प्रसन्ना खमेसरा जी ने दिखाया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो समाज को सुरक्षा भी दे और संस्कृति को भी संबल दे। सृजन द स्पार्क सिर्फ एक संस्था नहीं, एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जहां कलाकारों को सम्मान मिलता है, युवा प्रतिभाओं को मंच मिलता है और भारतीय संगीत को वैश्विक पहचान। खमेसरा जी, आपने अपने कर्म से सेवा की, अपने स्वप्न से सृजन किया, इसके लिए हम दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपका आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: आलोक जी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसलिए भी कि आज आपने ऐसी ऐसी चर्चा हमारे साथ छेड़ी कि बचपन की बात की सारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स अभी भी मन में रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बातचीत आपके द्वारा मेरे साथ की।
1: तो दोस्तों, अगर इस बातचीत ने आपके भीतर भी कला के प्रति सम्मान जगाया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि संस्कृति तभी जीवित रहती है जब समाज उसे जीवित रखता है। मैं हूं आलोक कुमार, आप सुन रहे हैं जिंदगी के रंग गीतों के संग। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ, तब तक संगीत सुनते रहिए, संवेदनशील बने रहिए। नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: अ से अर्जुन,
2: आ से आशा।
1: जी
3: भैया ने बुलाए,
4: चलते हैं। मुझे लगता है खेलने के लिए बुलाया होगा।
5: चलो, कहीं पढ़ने के लिए तो नहीं बुला रहे?
4: कहीं काम से
6: लगता है बच्चे आ गए। बच्चों की आवाज है। अरे अरे अरे, अरे, अरे आ जाओ बच्चों, आ जाओ। शाबाश।
7: नमस्ते भैया।
6: नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आ जाओ शाबाश। बैठ जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। पहले तो सब बच्चे अपना अपना नाम बताएंगे, ठीक है ना?
8: नमन,
6: लवीश,
9: अर्णव,
6: अभय,
10: दक्षाग्र,
6: कुशाग्र,
11: निशांत।
6: भाई जोर से बजाओ ताली पहले सबके लिए। शाबाश शाबाश। ये बताओ, कहानी सुनना किस किस बच्चे को अच्छा लगता है? हाथ खड़ा।
12: मुझे।
6: तो बच्चों, आज से मैं आपको रोज एक नई कहानी सुनाया करूंगा।
13: कहानी
14: अपनी बहन को।
15: महमूद भी आए।
6: हाँ हाँ, महमूद को लेके आना, अपनी बहन को लेके आना, अपने भाई को लेके आना, ठीक है ना? और जानते हो कहानी किस पर हुआ करेगी?
16: हाथी,
6: गिलहरी, बिल्ली। बिल्कुल ठीक। भाई मैं इन सब की कहानियां तो सुनाऊंगा ही, और साथ में सुनाऊंगा तुम्हें अक्षर की कहानी।
17: ये क्या बात हुई?
6: ये कौन आ रहा है?
17: नमस्ते भैया।
6: नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ अंदर। शाबाश। बैठ जाओ।
15: तो आज नई कमीज पहनी है।
6: क्या?
15: आज नई कमीज पहनी है।
6: अरे निशांत, इसका नाम आतुल नहीं, अतुल है।
15: अतुल?
6: अरे वाह अतुल, तुम्हारी कमीज तो बहुत ही सुंदर है।
15: ये मामा जी ने दी है।
6: अच्छा, क्या बात है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे निशांत ने अतुल को आतुल बोला, ऐसे ही अगर हम अमर में अ की जगह आ लगाएं तो क्या बनेगा?
15: अमर।
5: और भैया अकल का हो जाएगा आकल।
6: आकल। वैसे बच्चों, होता है अकल, जैसे अकलमंद। तुम तो सच में बहुत अकलमंद।
5: भैया अजब का बन जाएगा आजब।
6: हाँ आजब। शाबाश, बजाओ सी बात, जोरदार तालियां बजाओ, तालियां शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर मैं आरती में आ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा? सोचो।
15: आरती।
6: वाह शाबाश। और अगर मैं अकेला में आ की जगह आ लगाऊं तो क्या बनेगा?
15: अकेला।
6: अकेला। तो इसी बात से बच्चों हो जाए अक्षर की कहानी। से अक्षर, अ से
12: अक्षर।
15: भैया मेरी बहन ने छोटे अ से अनार सिखाया है।
6: अच्छा, और बड़े अ से?
15: बड़े अ से आम।
6: वो आपको समझाने के लिए कहती हैं, छोटा आ बड़ा आ। और वो बच्चों इसलिए क्योंकि हम अगर थोड़ी देर के लिए बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे अ, और अगर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो हम इसको खींचेंगे जैसे आ। तो अ और आ, अ से अनार और आ से आम। इसीलिए तुम्हारी मैडम या तुम्हारे सर तुम्हें समझाने के लिए कहते हैं छोटे अ से अनार, बड़े आ से आम। होता है लघु स्वर जैसे अ, थोड़ी देर के लिए बोला हमने, और दीर्घ स्वर ज्यादा देर के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे आ। बोलो मेरे पीछे एक साथ, ठीक है? अ आ,
12: आ,
6: आ,
12: आ,
6: शाबाश। तो बच्चों हमारी आज की कहानी है अ से अर्जुन और आ से आशा। अ आ,
12: आ, आ,
6: आ। आगे समझ में? अ से
12: अर्जुन
6: और आ से
12: आशा।
6: शाबाश बच्चों, दोनों भाई बहन थे, अर्जुन छोटा था, आशा बड़ी थी। दोनों भाई बहन बड़े शरारती थे, दिन भर खेलते रहते। इतना खेलते बच्चों, इतना खेलते कि उन्हें खाने पीने की भी चिंता नहीं रहती थी। हाँ अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ?
2: क्या हुआ भैया?
6: एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। अच्छा, तमाशे वाला कौन होता है, कौन बताए?
5: वो रस्सी पे चलता है भैया।
6: हाँ, सही कहा तुमने।
5: जादू भी करता है।
6: हाँ।
5: भैया और वो नए नए खेल दिखाता है।
6: नए नए खेल दिखाता है, क्या बात है। तो एक बार अर्जुन और आशा के घर के बाहर तमाशे वाला आया। आ से आया, आ से आशा और आ से आया, ठीक है। तो बच्चों, दोनों तमाशा देखने में इतना खो गए कि अचानक जब वर्षा आई तब भी वो बाहर ही खड़े रहे।
5: भैया आ से अचानक।
6: हाँ, आ से अचानक।
3: भैया आ से आया।
6: आ से आया और आ से आई।
5: भैया आ से आता।
6: आ से आता, शाबाश। आ से आज। तो सुनो आगे क्या हुआ। तो बच्चों, जब बारिश हो रही थी तो उनकी अम्मा ने उन दोनों को आवाज लगाई। अरे बच्चों, अरे आशा और अर्जुन, जल्दी आओ जल्दी। अरे बारिश होने लगी है बेटा, अरे बीमार पड़ जाओगे, भीग जाओगे, जल्दी आ जाओ अंदर। हाँ, तो बच्चों, आ से आशा, आ से आवाज, आ से आओ और से
5: अर्जुन,
6: से अर्जुन,
5: आ से अमरूद,
6: से अमरूद,
5: आ से अगली,
6: से अगली,
5: आ से अजगर,
6: से अजगर,
3: अंदर,
6: से अंदर,
5: अम्मा
6: और से अम्मा, शाबाश। बहुत बढ़िया बच्चों। तो बच्चों, अर्जुन और आशा भीग चुके थे, उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। इसी बीच अम्मा ने चूल्हे में आ से आग जलाई और पकाए गर्मा गर्म पराठे।
5: भैया आ से आटा।
6: आ से आटा, शाबाश।
3: आ से आग।
6: आ से आग।
5: भैया अ से अरहर की दाल।
6: अ से अरहर, सही कहा तुमने। और बच्चों, साथ ही बनाई अरबी की सब्जी। किसकी सब्जी?
12: अरबी की सब्जी।
5: भैया अ से अरबी।
6: हाँ, शाबाश। हाँ, अ से अम्मा।
5: अ से अगर।
3: अ से अगरबत्ती।
6: अ से अगरबत्ती। अ से अगर। अ से अजगर। अ से असलम और अ से अम्मा। अ से अरहर और अ से अरबी। और हाँ, एक चीज और भी बनाई, बड़ी चटपटी मसालेदार। अम्मा ने बनाए चटपटे आलू।
3: मुझे आलू पसंद है।
6: मुझे भी पसंद है भाई चटपटे आलू।
5: मुझे अनार पसंद,
6: अनार पसंद है। से अनार। तो अम्मा ने उन्हें अनार भी दिया खाने को और हाँ, आम भी दिया। आम किसको पसंद है? वाह, सभी को पसंद है ना। तो आ से आम, आ से आलू, अ से अरबी और अ से अरहर।
5: से अपनी
6: और आ से आंखें, अपनी आंखें।
5: भैया आ से आम का अचार।
6: आ से आम और अ से अचार। तो आम का अचार, वाह क्या बात है, बड़ा तालियां जोरदार। तो बच्चों, आगे सुनो। अम्मा ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और अर्जुन और आशा से कहा,
8: अरे बच्चों, अरे भाई, अपने आप ले लो खाना, मैं तो काम में बहुत व्यस्त हूँ, ले लो। हाँ,
5: अ से अपने।
6: अ से अपने।
5: भैया आ से आप।
6: आ से आप, शाबाश।
5: अपने आप,
6: वाह क्या बात है, अपने आप। तो बच्चों, अर्जुन और आशा ने ढेर सारा खाना खाया, उन्हें भूख भी तो लगी थी ना।
5: भैया,
6: अच्छा बच्चों, ये बताओ उन्हें खाना कैसा लगा होगा?
5: बहुत अच्छा लगा।

0: अच्छा
1: शाबाश, अ से अच्छा। तो दोनों कहने लगे, आहा मजा आ गया, आहा अम्मा ने कितना अच्छा कितना स्वादिष्ट खाना बनाया था, आहा मैंने तो खूब खाया।
2: भैया आ से आहा।
1: बहुत बढ़िया, आ से आहा। हाँ तो इस तरह दोनों बहुत खुश हो गए और उन्होंने अम्मा का धन्यवाद दिया।
3: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: अधिक बलवान कौन?

0: एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा,
1: मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ।
0: सूरज ने हवा से कहा,
2: मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है।
0: इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा,
1: इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज्यादा बलवान है।

0: सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा,
1: ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत।
0: हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की।

0: आदमी की टोपी उड़ गई।
1: अरे अरे अरे आए आए।
0: पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा।
1: अरे अरे अरे।
0: पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी।

0: सूरज ने कहा,
1: हवा अब तुम मेरी ताकत देखो।

0: सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा,
1: देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट।
0: हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा,
2: मान गई तुम्हारी ताकत को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: जलियांवाला बाग

0: ये बात उस वक्त की है जब पहले महायुद्ध में हिंदुस्तानियों ने विदेशी सरकार की तन मन धन से सहायता की और इसके बदले में भारतीयों को मिला रॉलेट बिल।
1: रॉलेट बिल ने पुलिस को बिना वारंट के लोगों को गिरफ्तार करने, नजरबंद करने और तलाशी लेने के पूरे अधिकार दे दिए। अदालतों में पैरवी करने की मनाही कर दी गई।
0: इस कानून का सीधा सा मतलब था व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत। 6 फरवरी 1919 को रॉलेट बिल नाम के दो बिलों को बड़ी काउंसिल में पास करने के लिए पेश किया गया। 24 फरवरी के दिन गांधी जी ने ऐलान किया कि अगर बिलों को पास कर दिया गया तो सारे देश में सत्याग्रह होगा, और 30 मार्च 1919 को रॉलेट बिल के विरोध में देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई गई। लेकिन इस हड़ताल की तिथि बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई, पर दिल्ली खबर न पहुंचने की वजह से 30 मार्च को ही हड़ताल हुई।
1: लेकिन इसी बीच पहला बिल मार्च के तीसरे सप्ताह में पास कर दिया गया, जो रॉलेट एक्ट कहलाया।
2: मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
3: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रॉलेट एक्ट वापस लिया जाए।
4: रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस लो, रॉलेट एक्ट वापस।

पूरे देश में हड़ताल हुई। पंजाब के सभी नगरों में यह हड़ताल शांतिपूर्वक रही। 9 अप्रैल के दिन रामनवमी थी। रामनवमी के अवसर पर अमृतसर में हिंदू मुसलमानों ने जुलूस निकाला।

0: और नो।
1: ये हिंदू मुसलमानों की कौमें एक होकर तो हमारा सरदर्द बन जाएंगी। क्यों नहीं डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाए? इससे आवाम का जोश भी ठंडा पड़ जाएगा। यस, हे यू, कम अप।
2: इसी बीच गांधी जी भी पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर वापस बंबई भेज दिया गया। नेताओं की गिरफ्तारी से पंजाब और ज्यादा उत्तेजित हो उठा और अमृतसर को सेना के हाथों सौंप दिया गया। सेना का सर्वे सर्वा था जनरल डायर। 11 अप्रैल को अमृतसर में जनता ने हड़ताल की और जुलूस निकाला। 12 अप्रैल को अमृतसर एक सैनिक कैंप बन गया। जनरल डायर ने हवाई जहाज से शहर का निरीक्षण किया और गली गली फौजी मार्च कराया गया।

0: महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की
1: जय। भारत माता की
2: जय।
1: भारत माता की।
3: जनरल डायर के सामने नारे लगाने की ऐसी हिम्मत, चौथा इन्हें कोरियर से पूंद डालू। नो नो नो, मुझे इससे बेहतर मौके का इंतजार करना होगा।
4: इंतजार, जनरल डायर ने और ज्यादा इंतजार नहीं किया। 12 अप्रैल को जुलूस के नेताओं को गिरफ्तार करके उन्हें हथकड़ियां पहनाई गईं और रामबाग ले जाकर उन्हें पेड़ों से बांध दिया गया। निगरानी के लिए डायर ने गोरखों को तैनात कर दिया। दमन चक्र सख्त होता जा रहा था। तेरह अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में आसपास के गांव से लोग बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। बैसाखी के मेले में भाग लेने आए इन लोगों ने अपना डेरा जलियांवाला बाग में जमाया हुआ था। इसी बीच जनरल डायर ने यह ऐलान कराया था कि शहर में कोई मीटिंग न की जाए, लेकिन यह ऐलान सब लोगों तक पहुंचा नहीं। जलियांवाला बाग में नेताओं की रिहाई के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। बैसाखी मनाने आए लोगों ने जब मीटिंग की भीड़ देखी तो कौतूहलवश वे भी इसमें शामिल होने पहुंच गए। शाम 4:30 बजे के लगभग जलियांवाला बाग में 10,000 के करीब लोग जमा हो चुके थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। वातावरण में विरोध था, तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
5: भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए, भाइयों और बहनों, माताओं और बच्चों, आज की सभा में हम कुछ जरूरी प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे।
6: भारत माता की
2: जय।
6: भारत माता की
2: जय।
6: भारत माता की
2: जय।
5: इन प्रस्तावों को पास करके हम इन्हें सरकार के पास भेजेंगे ताकि हमारी मांगे फौरन पूरी की जा सके।
6: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
6: हमारी मांगे
2: पूरी करो।
5: हमारा पहला प्रस्ताव है कि काला कानून रोलेट एक्ट वापस लिया जाए।
7: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
7: रोलेट एक्ट
2: वापस लो।
5: ये सभा 10 अप्रैल के दिन हुए गोलीकांड की निंदा करती है और शहीदों के परिवार के साथ सहानुभूति प्रकट करती है।
6: मारो,
5: मारो। सरकार से अनुरोध करती है कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को फौरन रिहा किया जाए।
6: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
6: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो।
6: सत्यपाल को
2: रिहा करो।
6: डॉक्टर किचलू को
2: रिहा करो।
4: सभा चल रही थी और उधर जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के एकमात्र दरवाजे पर आ डटा। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवारें थीं और केवल एक ही दरवाजा था जिससे अंदर आया जाया जा सकता था। इसी दरवाजे पर डायर के सैनिकों ने अपनी खूनी बंदूकें तान ली।

0: लोग एकमात्र दरवाजे की ओर भागे और गोलियां उन्हें बीनती रही। कुछ लोग दीवारों पर चढ़े जिससे कि दूसरी ओर कूदा जा सके, लेकिन कोशिश बेकार रही। गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कुछ कुएं में भी कूदे, लेकिन मौत उनका वहां भी इंतजार कर रही थी। पूरे 10 मिनट तक मौत का नंगा नाच होता रहा।
1: गोली चलाना बंद क्यों कर दिया? आई से फायर, फायर!
2: सर, सर कारतूस खत्म हो गए हैं।
1: और शट अप! ठीक, ये सबक काफी है। अबाउट टर्न, फायर!

मौत का दरिंदा जब दरवाजे से हटा, तब रतन देवी उस मौत के मैदान में अपनों को खोजती हुई पहुंची।

0: masih masih dari langsir deh kerja masih
1: apa?
0: Masih masih dari langsir deh
1: kerja kerja Allah puttara te tallavi lauwe puttara papa che te ate di ai bunne de papa ai rabba
2: ana pani pani ana pani
3: जब कोई हिंदुस्तानी किसी अंग्रेज अफसर को मिले तो उसे सलाम करे, अगर घोड़े पर सवार हो तो हिंदुस्तानी अंग्रेज की शान में घोड़े से उतर जाए, अगर हिंदुस्तानी छाता लगाए हो तो नीचे झुका ले। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पंजाब की खबरों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई।
4: और यही वजह थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर कांग्रेस के नेताओं को कई हफ्ते बाद मिली।
3: इस खबर के मिलते ही भारतीयों के मन दुख, ग्लानि और आक्रोश से भर गए। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा कि अब वो समय आ गया है कि जब सम्मान पदक शर्म पदक लग रहे हैं। डायर की मनमानी करतूतों के कारण पूरे पंजाब में विद्रोह भड़क उठा और इसी के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत के बढ़ते दमन चक्र की वजह से कसूर, गुजरावाला और लाहौर में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। ये सब देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के 6 महीने बाद अक्टूबर 1919 में हंटर जांच समिति नियुक्त की, जिसको जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की जांच करनी थी।
5: जनरल डार।
6: यस सर।
5: आप जब जलियांवाला बाग में पहुंचे तो आपने क्या किया?
6: मैंने गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या ये हुक्म आपने फौरन दिया?
6: यस, मैंने पहुंचते ही गोली चलाने का हुक्म दिया।
5: क्या वार्निंग नहीं दी?
6: नो, क्योंकि हमारे सुबह के ऐलान के बावजूद भी लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें कोई भी मीटिंग करने से मना कर दिया गया था। वैसे उन्हें मेरे आने की चेतावनी तो मिल ही गई होगी।
5: फिर गोली चलाने का क्या मकसद था?
6: मेरा मकसद गोली चलाकर फीट को टिटर बिटर करना नहीं था। मैं चाहता था कि इस तरह की फायरिंग के बाद पूरे पंजाब के लोगों में कुछ ऐसा डर बैठ जाए कि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ही ना हो।
3: जनता को डराने धमकाने के इस शर्मनाक तरीके को हंटर जांच समिति ने ताक पर रख दिया। हंटर जांच समिति की कार्यवाही केवल इस हत्याकांड पर लीपापोती करती रही और डायर को बरी कर दिया गया।
4: लेकिन कांग्रेस ने पंजाब की घटनाओं की सही जानकारी लेने के लिए अपनी एक समिति नियुक्त की, जिसके प्रमुख सदस्य थे सर्वश्री मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, देशबंधु चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब जी और जयकर। इस समिति ने 3 महीने तक पंजाब की घटनाओं का अध्ययन किया। समिति ने पंजाब के प्रशासकों की घोर निंदा की, प्रमुख रूप से पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर और सेना के जनरल डायर की भर्त्सना की गई।
7: कांग्रेस का दिसंबर अधिवेशन सन 1919 में पहले से ही अमृतसर में होना निश्चित हुआ था और वही हुआ। इस अधिवेशन में कुछ सदस्यों ने जलियांवाला बाग के अमानवीय एवं निर्मम हत्याकांड के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाई।
8: हम मांग करते हैं कि जनरल डायर को अपने पद से हटा दिया जाए।
9: पंजाब के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
10: अब भारतीयों का विश्वास वायसराय बोर्ड से उठ गया है, उन्हें आप ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस बुला लेना चाहिए।
8: आज के इस अधिवेशन में हम संकल्प लेते हैं कि जलियांवाला बाग के शहीदों की याद हम अमर करेंगे और जलियांवाला बाग को राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाएंगे।
7: जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग 1000 शांतिप्रिय निहत्थे एवं असहाय लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हत्याकांड ने भारतीय जनमानस को स्तब्ध कर दिया और इस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ बन गया।

0: नमस्कार दोस्तों,
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
2: पहली उड़ान में
3: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
4: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
5: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
6: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
5: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
6: हाँ पूछो बेटा।
5: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
6: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
4: लेकिन माँ।
6: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
5: जी
6: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
5: अच्छा माँ, ये लो माँ।
6: ला।
4: कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
5: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
6: क्या मिल गया
5: मुझे? माँ माँ माँ,
6: क्या मिल गया? क्या मिल गया
5: मुझे? मिल गया।
4: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया?
6: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
5: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
4: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
5: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
6: धुआं?
5: हाँ इस कमरे के धुएं को देखो।
6: हा?
5: इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ?
6: क्या उड़ रहा है?
5: बताओ
6: क्या
5: उसमें क्या उड़ रहा है?
6: कुछ हा? भी तो नहीं।
4: कुछ भी तो नहीं है।
5: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो।
6: हाँ
5: ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
4: वो तो है मगर
5: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
4: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
5: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
4: हाँ
5: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
4: हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
5: ठीक है, आओ मेरे साथ।
6: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो,
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
7: हाँ
0: क्या? अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
7: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
0: हाँ भाई भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
7: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
0: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
7: हाँ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चल।
0: ना दीजिए भला कोई चीज
8: उड़ी।
0: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब हट जाइए। आ गए यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
0: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
7: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
0: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
7: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
0: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
7: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
0: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे
7: मान गया कर दिया।
0: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
0: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छे, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
0: अरे चौपट, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पैरों की तरफ,
3: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
9: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
10: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं झाबुआ की आवाज पर रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, आप ही के रेडियो साथी आरजे राकेश के साथ। तो दोस्तों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे फाइलेरिया रोग के बारे में। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, इसे हाथी पांव बीमारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं फाइलेरिया बीमारी के बारे में विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी।
9: बीमारियों पर कम करेंगे खर्चा, हम करेंगे सेहत और स्वास्थ्य पर चर्चा।
11: हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है फाइलेरिया। फाइलेरिया एक ऐसा रोग है जिसके संक्रमण होने के बाद उसके लक्षणों का पता कभी कभी 10 से 12 वर्षों में चलता है। इस बीमारी से बचाव ही इसका इलाज है। और वो आसान सा बचाव क्या है? साल में एक बार खाई जाने वाली फाइलेरिया से बचाव की गोली। और इस विषय पर हमें आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आई हुई हैं डॉक्टर सारिका सिंह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब तकनीकी सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश से। और डॉक्टर साहब, हम फाइलेरिया विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आपको बताएं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति फाइलेरिया से संक्रमित है।
8: जी, फाइलेरिया रोग जो है वह परजीवी कृमि से होता के फैलने से होता है। इसके जो मुख्यतः लक्षण होते हैं वह शरीर में, मनुष्य के शरीर में शरीर